शरीर में मन मुख्य है। मन में कुत्सित विचारों के पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। मन को उपयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। नदी की प्रवाहमान धारा की तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहें तो स्वास्थ्य बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोएगा। रोगी होना शरीर का स्वभाव नहीं है, रुग्णता प्रकृति नहीं विकृति है। रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त शारीरिक स्वास्थ्य है। शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थक जाता है। शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्लांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार हैं और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है मानसिक विकार शरीर को विकृत कर देते हैं।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपके अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी टानागर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 मिनट हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुके हैं हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2024 जून महीने का सोमवार दिन और तारीख है 22। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारे पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गैरत और तकनीकी अभियंता तीनयोग। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, आप नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीत के साथ एक पॉजिटिव स्टार्ट आपको मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो दैनिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां हम योगा एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत करेंगे।

7:10 सुनिए आप बताने दैनिक न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन दैनिक न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सुधीर म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 मिनट रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर की खास खबरों के साथ। 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर, इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज।

0: शायरी में
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 MHz से। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है, भक्ति गीत।

0: दोस्तों, ये था कार्यक्रम भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब वक्त हो गया है अपने आसपास की खबरों से जुड़ने का। सुनिए कालो दालिक न्यूज, जहां आप तो
1: आकाशवाणी ईटानगर हिलो लुई पोल गे आलो हमनी गोला लोनी नाने लोने आर होके गालो में इनके नाग में मिलें जी दाख नागो दाख सपेते मेलो इंडिया ओके तल्ले कु पोमो को रूलो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एम इर्गा मुआजाब लो दुम्यातु 12 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एम इदाकलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुगे आयदा दी है हेदी हेकोर दाग बेगे दुला कोलकाता गे रेद्रो लो योगा एम नरिपागा जाब लो दुमगेतु नीतानी गे बदु अपो एम पुर्दी दो बे मोला ले नम लगा बे उन नरु है योगा ही गिम आलो दिखे बे इबेला ये रूलाज का अमला रोगो जितु मलो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स लो एडमिशन एम इला दो बे मुदुला नीट यूजी 2026 ग एग्जामिनेशन एम सिक्योरिटी अरेंजमेंट एम पुर्दे जादा दो बे मोला ले तुकुला आमाजा बे एग्जाम एम जिदी मोगे खुबा अमला मेंतु इंडिया आ रहा होगो परीक्षा जी देखो सेंटर एम 551 गो बे मोलुक जीतु ओके फॉरेन कंट्री लो ये गोला आपी सिटीज लो सिन एग्जाम सेंटर एम मोलुक जीता तु परीक्षा जी दाख लो बोधुम बे 22.79 लेक्स गो बे कैंडिडेट एग्जाम लो एपियर जीतु गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ओके स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर व्यूराम वागे मुन्ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा एम ईटानगर के लोक भवन लो दुमगला दोदा कालो लो आलिक जितु इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी जीरो गद डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एम लेकिन गोब ये बाम दू बाम ही दाखला दिन सुरुना इवेंट एम इक जितु लोदुमालोलो गवर्नर में आगम जब्दुल्ला मेला इंडिया हो को कोई मलोक के योगा एम इबगे लाये तो एगम इजा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बे मोलें जिक नाम ही गें उनुंग नारुग असे जाब मुझको बे इदा कुन्ना के एमला मेंटू थर्ड एडिशन यूनिवर्सल कंपेशन कप 2026 जांग लो मलो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में मोको गितू सोशल मीडिया लो पोस्ट दूला सीएम मेनला यूनिवर्सल कंपेशन कप हिगी फुटबॉल टूर्नामेंट लो न्यूम्ब दो तरमा कारण हिज होलीनेस दलाई लामा मुग गुनाम हुनाम एम अलालना नीतोम दो एम कुगो जिला ये दुम जाबंग नागो अमला मेंटू हिज होलीनेस 14 दलाई लामा ग 91st बर्थडे एम सेलिब्रेट नाम लगा बे मुदला फुटबॉल टूर्नामेंट हिगेम ऑर्गेनाइज जिदुना जांग सेंगजम ब्रदर्स यूथ एसोसिएशन का द अमला सिंबरोग जाब चापकिन जितु मेंके नागम हिम नुनु आकाशवाणी ईटानगर लोक के तपादु आरडीएन पंचायती राज कॉपरेशन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंता सिंह में मलो पासीगात लो सेल्फ हेल्प ग्रुप गात गे लगा जाबक बे लिबलीहुड मार्केट सेट गो मोल गेला लेना में मोको जितु लक्के लोक अंसल समिति गात गे मीट मार्केट सेट एम पासीगात लो मोल गेला लेना एम इस सियांग पंचायत डिपार्टमेंट गद अलिब मोतेन मोमगेकला अन्य में सेल्फ हेल्प ग्रुप गद्दम जिलबोजर इग तोकला का अमला जिलें जितुकु नेचुरल फार्मिंग यो सब इबोलो पुर्द यारु दोब इकेन दोद एगम अलिब तका का पक ही नाम लगा ब मुदला पासीगाद गे डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल लो डिस्ट्रिक्ट लेवल जन कल्याण शिविर एम लोदुम गेतु लोदुमालोलो रिकिला येने ओक निलुमनित आकुम नागादम नेचुरल फार्मिंग इनाम गे बेनिफिट्स याद नागो कादो दे अगम अलिजाब मेंतम मेंतम जितु इंडियन वीमेन्स हॉकी टीम गद होस्ट टीम न्यूजीलैंड एम मलो ऑकलैंड लो 2-0 लो के फाइनल एम केली दागेलो इगुम गेकला लंग यूरोप नाब FIH वीमेन्स नेशंस कप टाइटल एम पागी कुबा अमला मेंटु ओके इजा टीम इंडिया फाइनल एम इगुम रोकियम FIH वुमेन्स प्रो लीग लोसिन केली लाइकु अमला बरोग जाब जापकेन जितु टीम इंडिया के फाइनल लो न्यूजीलैंड इगुम नमम कादु कुला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मग पेले लो का आगा मागम आमम तरम जाब जिलिक जितु। मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर गद्द मेनला इस सियांग ओके लोअर दिबांग बेली लो दोय दोगुम गुमला दोय अक्यागला ओके निदुआ अतिब ओदे दंगना के अमदुला रेडे लार्थ गो जिलें जितु। एमसीआई गद्द मेंताला पपुम परे वेश्यांग ओक लपर अदालो से निदो को दे अतिब ओदे दंगना के अमदुला ऑरेंज अलर्ट गो जिलें जितु। कब कब डिस्ट्रिक्ट लोसिन निदो को दे माज माजी बो ओदे दंगना के अमदुला एमसीआई गद्द येलो अलर्ट गो सिन जिलें जिता तु। केतन गद्द हिर्ग गालो मेंकेन अगो मेंजिसा अगर

दोस्तों गरुड़ालेख में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से ताजा तरीन खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक नई ताजगी, एक नई उम्मीद और ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी का। आकाशवाणी टानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे याजू और इस खूबसूरत सुबह का हम सफर लेकर हाजिर हूं आपकी सबसे पसंदीदा और सेहत से बड़ा कार्यक्रम सुबह सवेरे। अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी खाया, यानी अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। सुबह की इस ठंडी ठंडी हवा में जब पहाड़ों पर धुंध हल्की हो रही है तब बिस्तर से उठने का मजा ही कुछ और है। लेकिन सच सच बताना, सुबह उठते ही सबसे पहले किस किसने अपना मोबाइल चेक किया था, व्हाट्सएप की गुड मॉर्निंग मैसेजेस देखने से पहले अपनी बोरी को एक बार गुड मॉर्निंग बोलना जरूरी है। दोस्तों आज के शो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी बिजी लाइफ को थोड़ा और हेल्दी बना सकते हैं। हम बात करेंगे हमारे सदियों पुरानी परंपरा यानी योगा के बारे में, थोड़ी मजेदार एक्सरसाइजेस की बातें होंगी और ढेर सारी काम की हेल्थ टिप्स भी मिलेंगे। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद हसीन गाने के साथ। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए, मैं अभी हाजिर होती हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर सुबह सवेरे आपके अपने दोस्त आरजे याजू के साथ। दोस्तों, जब हम सेहत की बात करते हैं तो एक शब्द हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है और वो है योगा। लेकिन क्या आपको पता है कि योगा कोई ऐसी चीज नहीं है जो पिछले कुछ सालों में अचानक से फेमस हो गई। इसका इतिहास बेहद गौरवशाली और हजारों साल पुराना है। हमारे देश भारत में लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी योगा के सबूत मिले हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने ऋग्वेदा और उपनिषद में इसका गहरा जिक्र किया है। महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्र में एक बहुत सुंदर बात कही है, स्थिरा सुखम आसनम, यानी जो आसन आपकी बॉडी को स्टेबिलिटी और सुख दे वही असली योगा है। योगा का मतलब सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं होता। योगा शब्द संस्कृत के युग से भाषा है जिसका मतलब होता है जुड़ना, यानी आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी सोल का एक साथ जुड़ जाना। अगर आपने कभी योगा नहीं किया तो डरना बिल्कुल नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटी और आसान होनी चाहिए। आज से ही आप ये तीन चीजें शुरू कर सकते हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाती। सुबह उठकर सिर्फ 5 से 10 मिनट किसी शांत जगह पर बैठकर डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा और दिमाग से सारे स्ट्रेस को धूल की तरह उड़ा देगा। वृक्षासन फॉर फोकस, अगर आपका दिमाग भटकता है या घर में बच्चों का काम में मन नहीं लगता तो एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाना सीखिए। यह आपके नर्वस सिस्टम को कूल करता है और फोकस बढ़ाता है। बालासन फॉर जिसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं, दिन भर की बागडोर से अगर आपकी पीठ में दर्द रहता है तो बालासन कीजिए। इससे स्पाइनल कोर्ड को बहुत आराम मिलता है। सबसे जरूरी बात, योगा हमेशा खाली पेट कीजिए। अगर सुबह कुछ खा लिया है तो कम से कम 2 घंटे का गैप जरूर रखें। योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए चमत्कार। चलिए इस पीसफुल ज्ञान के बाद बॉडी के एनर्जेटिक मोड को ऑन करते हैं एक सुपरहिट गाने के साथ। सुनिए ये गाना।

दोस्तों, रेडियो की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर कार्यक्रम सुबह सवेरे। योगा से हमने माइंड को शांत कर लिया, अब बारी है बॉडी के मसल्स को एक्टिव करने की, यानी एक्सरसाइज। कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाना जरूरी है या भारी भारी डंबल्स उठाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, हम ईटानगर के लोग तो वैसे ही इतने हसीन पहाड़ों के बीच रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल ही हमारी जिम है। स्टेयर क्लाइंबिंग यानी ऑफिस या घर में लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ने की आदत डाल लें, ये आपके थाई मसल्स और हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है। ब्रिस्क वॉकिंग, सुबह सुबह तेज कदमों से चलना सबसे बेस्ट है। अगर आप रोज सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा में 20 से 30 मिनट तेज चलते हैं तो आपका दिल हमेशा जवान रहेगा। अगर वॉक पर जाने का वक्त नहीं है तो घर पर ही एक मिनट के लिए प्लैंक पोजिशन में रहिए। ये आपकी बेली फैट को कम करने और कोर बॉडी को रॉक सॉलिड बनाने के लिए किंग एक्सरसाइज है। स्ट्रेचिंग रूटीन, एक बात याद रखे, बेड से उठते ही झटके से एक्सरसाइज मत शुरू कीजिए। पहले अपनी बॉडी का आलस भगाने के लिए थोड़ा लेफ्ट राइट ट्विस्ट कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिन्हें हम हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। मतलब साफ है दोस्तों, जितने एक्सरसाइज करोगे उतना ही खुश रहोगे। तो आलस छोड़िए और थोड़ा सा पसीना बहाइए। चलिए, आपकी एनर्जी को और बढ़ाने के लिए प्ले करती हूँ आज का ये तीसरा गाना।

दोस्तों, योगा और एक्सरसाइज की बातें हो गई, अब बात करते हैं उन छोटी छोटी हेल्थ टिप्स की जो आपकी लाइफ बदल सकती है। इन्हें ध्यान से सुनिएगा और आज से ही फॉलो कीजिएगा। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने से पहले कम से कम एक या दो ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिएगा। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुपर फास्ट बनाता है। हम जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि खाने को इतना चबाओ कि वो पेट में जाने से पहले पानी बन जाए। कम से कम 32 बार चबा कर खाइए, एसिडिटी और गैस हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। हमारे सुबह का नाश्ता सबसे हैवी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए। अपने ब्रेकफास्ट में लोकल फ्रेश फ्रूट्स, उबले हुए अंडे या स्प्राउट जरूर शामिल करें। नाश्ता कभी स्किप मत कीजिएगा। अपने डाइट में से 3 सफेद चीजों को थोड़ा कम कीजिए, सफेद नमक, सफेद चीनी और मैदा। इनकी जगह सीधा सेंधा नमक और गुड़ का इस्तेमाल शुरू कीजिएगा। कोशिश करिए कि आप डिनर रात को 8 बजे से पहले हो जाए, और हाँ, सोने से आधा घंटा पहले अपना फोन स्विच ऑफ या साइलेंट जरूर कर दे, ताकि आपको 60 घंटे की सुकून वाली नींद मिले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे कार्यक्रम सुबह सवेरे का आज का सफर बस यही तक था। उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें आपके काम आएंगी और आप आज का दिन पूरी एनर्जी और अच्छी सेहत के साथ बिताएंगे। हमेशा याद रखिए, आपका शरीर आपका सबसे पहला घर है, इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे यानी अपनी आरजी याचू को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आकाशवाणी ईटानगर पर गाने और काम की बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। सुनते रहिए अरुण FM, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों, ये था कार्यक्रम सुबह सवेरे। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा और अपने आप को थोड़ा और फ्रेश महसूस कर रहे होंगे। इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, अब सुनिए आप बताने दैनिक न्यूज अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ आपके लिए। ये आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz है, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, आप सुन रहे थे अपादाने दालेक में। अभी ताज़ा खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक नई ताजगी और ढेर सारी नॉलेज से भरा सफर का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे याजू, लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट सेगमेंट। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नया सबक और एक नया इतिहास लेकर आती है। आज है तारीख यानी 22 जून का भी हमारी और दुनिया की तारीख में एक बेहद खास मकाम है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान लगाते हैं उन पन्नों पर जो आज के दिन को बेमिसाल बनाते हैं। शुरू करते हैं हमारे और उन यादों के साथ जो ग्लोबल और इंडियन हिस्ट्री से जुड़ी है।

दोस्तों, आज का दिन इतिहास के पन्नों में बहुत बड़ी उथल उथल पेथल और महान श्रोताओं के नाम दर्ज है। चलिए जानते हैं उन बड़े इवेंट्स के बारे में। 1633 गैलीलियो गैलीलीज ट्रायल। आज ही के दिन महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली को रोमन रिलीजियस अथॉरिटीज के सामने अपने उस सच के पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती नहीं बल्कि सूरज ब्रह्मांड के केंद्र में है। साइंस और पुरानी मान्यताओं के बीच की ये लड़ाई हमेशा याद रखी जाती है। 1815 नेपोलियंस एब्डिकेशन। ग्लोबल हिस्ट्री का एक और बड़ा दिन, जब महान फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्ट ने दूसरी और आखिरी बार अपनी ताज और तख्त को छोड़ा था। इस इवेंट ने पूरी यूरोप के सियासत और नक्शे को बदलकर रख दिया।

अकबर द ग्रेट का रास्ता तय किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस फाउंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत की आजादी की लड़ाई का एक महान मोड़ आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी ताकि आजादी की लड़ाई को और ज्यादा तेजी से क्रांति दे जा सके। 1996 में आज ही के दिन क्रिकेट प्रेमियर्स के लिए आज का दिन बेहद जज्बाती है क्योंकि आज ही के दिन दादा यानी सौरभ गांगुली ने अपने टेस्ट डेब्यू पर लॉर्ड्स के मैदान में 131 रन्स की शानदार सेंचुरी लगाकर दुनिया को अपना लोहा मनवाया था। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि वक्त बदलता जरूर है, बस आपका हौसला बरकरार रहना चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ सुनते हैं सुबह का ये पहला नया और बेहद हसीन गाना।

वेलकम बैक दोस्तों। गाने के बाद अब रुख करते हैं सुबह की ताजा तजीम सुर्खियों की तरफ। आइए चले जानते हैं कि अरुणाचल टाइम्स के न्यूज़पेपर में आज मुख्य समाचार क्या क्या छपी है। हमारी पहली हेडलाइन सीधी देश की सुरक्षा से जुड़ी है। पहलगाम अटैक, एनआईए चार्जशीट इंडिकेट्स क्रॉस बॉर्डर ड्रॉप इन ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहलगाम टेरर अटैक केस में जो चार्जशीट फाइल की है उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। चार्जशीट के मुताबिक सीमा पार से ड्रोन्स के जरिए बारामूला तक बिना डिटेक्ट हुए हथियार और एम्यूनिशन गिराए गए हैं। इसमें एक चिंता की बात यह भी सामने आई है कि हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग यानी जमीन पर मौजूद लोगों से मिलने वाली जानकारी में थोड़ी कमी आई है, जिसके चलते ये एक्टिविटीज पकड़ में नहीं आ पाई। सुरक्षा एजेंसी अब इस नए चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो देश के लाखों स्टूडेंट्स और उनके परिवार से जुड़ी हुई है। लैक्स अपीयर्स फॉर नीट टेस्ट अमिड टाइट सिक्योरिटी आफ्टर पेपर लीक रो। 200 पेपर लीक कॉन्ट्रोवर्सी के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरे देश में नीट यूजी के री एग्जामिनेशन करवाई। देश भर में 5,500 से ज्यादा सेंटर्स पर लगभग 22 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट इस रिटेस्ट में शामिल हुए। इस बार सिक्योरिटी का इंतजाम इतना रॉक सॉलिड था कि सीसीटीवी सर्विलियंस, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और दो लेयर की फ्रिशकिंग भी की गई थी ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे इन मेहनती बच्चों को उनका सही हक मिले।

दोस्तों, अब रुख करते हैं सियासत के मैदान की तरफ, जहां बयानबाजी का दौर हमेशा गर्म रहता है। मोदी डिस्ट्रॉइंग इंडिया, ट्रम्प द वर्ल्ड, कारगे। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा सियासी हमला बोला है। उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां एक तरफ देश के भीतर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा और कहा कि वो ग्लोबल लेवल पर दुनिया के लिए सही नहीं है। खड़गे जी का ये बयान इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल्स में बहुत तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद रुक करते हैं हमारी अगली सोशल और एनवायरनमेंट से जुड़ी रिपोर्ट का, परमिशन ऑफ पैरासाइट्स। द अरुणाचल टाइम्स में आज एक बहुत ही गहरी रिपोर्ट छपी है जिसका टाइटल है परमिशन ऑफ पैरासाइट्स। इस आर्टिकल में हमारे बदलते हुए एनवायरनमेंट, पानी और हेल्थ हजार्ड्स पर बात की गई है कि कैसे पैरासाइट्स और बीमारियां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में धीरे धीरे घुल रही है। इस पर हम सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अब आखिर में हमारे प्यारे अरुणाचल से एक बेहद पॉजिटिव और खुशखबरी वाली न्यूज, मार्केट शेयर इनोग्रेटेड इन पासीघाट। पासीघाट के हमारे भाई बहनों के लिए एक बेहतरीन खबर, वहां पर एक नए वेल इक्विप्ड मार्केट शेड का इनोग्रेशन किया गया है। इस नए शेड के बनने से जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं, उन्हें अपना सामान और फ्रेश वेजिटेबल्स बेचने में बहुत आसानी होगी और बारिश या धूप में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पासीघाट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है।

तो दोस्तों ये थी आज के न्यूज़पेपर की वो खबरें जिन पर सबकी नजर है। खबरों का सिलसिला यहां पूरा होता है, लेकिन इंफोटेनमेंट का मजा अभी बाकी है। चलिए आपको फ्रेश करने के लिए प्ले करती हूं आज का ये दूसरा गाना।

एंड पंचायती राज मिनिस्टर, पंचायती राज कॉरपोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मिनिस्टर ओजिंग तसिंग गेलाकब, लिवलीहुड मार्केट सेड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप पासीघाट ग मलिन खुनम गुनी मुखो जिलाकुलरी गुनी खुबला बेफादुखु ओकोसु सो अगुलो अंचल समिति मीट मार्केट सेट गुनिका पासीघाट लो मुखो जिलाकुलरी देगन खुबला बेफादुखु एफ वन एच वुमेन्स नेशंस कप हॉकी टीम गा इंडिया गा होस्ट न्यूजीलैंड गा फाइनल लो 2.20 गोल ब यागन खुबला मे पादुकु सो ग फाइनल मैच ग ऑकलैंड लो इंडिया ग ला न्यूजीलैंड ग लिख सुखु लो इंडिया हॉकी टीम ग अलरोंग ब यागन खुब सोंग लो अलरोंग ब मंगदुखुन ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मे पालिन दुकु मेट्रोलॉजिकल सेंटर इटानगर लोक बेंपाकुनाम ग अरुणाचल प्रदेश ग ईस्यांग लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट लो रेड अलर्ट गो कातामला निदोंग अच्छल होलकते दुला मेपादुकु ओको पापम पारे वेस्ट सियांग ओको लपारादा डिस्ट्रिक्ट लोका ऑरेंज अलर्ट गो कातामला निदोंग अच्छल होलकते दुला मेपादुकु सो ग डिस्ट्रिक्ट मोको गुनलु दोगुन दोरे अंग तकला निदोंग अच्छल होलकते दु तोद तेदुकेला मेपालेन दुकु सरुग तागिन गाम इनिंग बिन तमसंग का हेबो

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दागिन दालिक में ताजा तरीन खबरें। खबरों के सिलसिले के बाद अब रुख करते हैं एक ऐसी महफिल की तरफ जहां सुर बदलेंगे, यादें ताजा होंगी और पुराने गीतों का कारवा आपके दिलों को छू जाएगा। मैं यानी आपकी आरजू याजू लेकर हाजिर हूं आपके अपना म्यूजिकल प्रोग्राम सदाबहार। दोस्तों सदाबहार का मतलब ही है वो संगीत जो कभी पुराना नहीं होता, जो हर मौसम हर दौर में हमारे दिलों में हरा भरा रहता है, बिल्कुल हमारे अरुणाचल के इन हसीन हमेशा हरे भरे पहाड़ों की तरह। लेकिन घर से बाहर निकलने से पहले या दोस्तों के साथ किसी सफर पर निकलने से पहले मौसम का हाल जानना बेहद जरूरी है ना। तो चलिए इस म्यूजिकल सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे पुराने गुनगुनाते हुए गीत के साथ, और उसके बाद बात करेंगे आज के मौसम की पूरी डिटेल में।

0: वेलकम बैक दोस्तों। पुराने गीतों के धुन पर झूमने का मजा ही कुछ और है ना। अब बात करते हैं हमारे राजधानी यानी ईटानगर के मौसम की। अगर आप आज कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बाहर निकल रहे हैं तो अपना छाता साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईटानगर में इस वक्त हल्की बारिश चल रही है। करंट टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हवा में नमी के चलते ये 26 डिग्री सेल्सियस जैसा फील हो रहा है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, लगभग 98%, और ठंडी हवा साउथ ईस्ट डायरेक्शन से 1 MPH की रफ्तार से चल रही है। आज दिन भर कैपिटल में हल्की बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और रात होते होते टेम्परेचर गिरकर 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। दिन के समय बारिश होने का चांस 44% है, जो कि रात को बढ़कर 60% हो जाएगा। यूवी इंडेक्स आज 4 रहने वाला है, यानी धूप की तपन कम रहेगी क्योंकि बादल पूरी तरह छाए हुए हैं। तो ईटानगर के मेरे दोस्तों, मौसम सुहाना है, चाय की चुस्की लीजिए और सुनिए हमारे फिल्म इंडस्ट्री का एक और सदाबहार नगमा।
1: सुर में गाना सीखिए।

0: Archimedes. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: 200 रेडियो की दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत है। इतानर के बाद अब रुख करते हैं हमारे पूरे स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश के मौसम पर एक गहरी नजर डालने के लिए। आज पूरे अरुणाचल प्रदेश में आसमान बादलों से घिरा हुआ है। हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूरे स्टेट का एवरेज टेम्परेचर इस वक्त 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जो ठंडक का एहसास दिला रहा है। ह्यूमिडिटी लगभग 96% दर्ज की गई है। आज का दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे स्टेट में एवरेज 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है और रात को ये ड्रॉप होकर 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से 1 mph की रफ्तार से हल्की हवाएं चल रही है। आज दिन में पूरे स्टेट के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना 50% है, लेकिन ध्यान रखिएगा रात होते होते ये चांस बढ़कर 75% हो जाएगा, यानी रात को काफी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। पहाड़ी रास्तों पर चलते समय थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि मौसम पूरी तरह से बरसात के मूड में आ चुका है। चलिए मौसम की इस डिटेल के बाद इस खूबसूरत दोपहर को और यादगार बनाते हैं। आज के इस आखिरी और सबसे बेहतरीन रोमांटिक ओल्ड गोल सॉन्ग के साथ इस गाने को सुनिए और खो जाइए यादों की हसीन सिलसिले में।

0: का ये सेगमेंट अब यहीं पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूं कि आज की ये भारी मौसम की रिपोर्ट और ये दिलों को छू लेने वाला बेहतरीन रेट्रो गाने आपके इस दिन को और भी यादगार बनाएंगे। घर से बाहर निकलते समय अपना ख्याल जरूर रखिएगा। पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करते वक्त गाड़ी ध्यान से चलाइए और इस सुहाने मौसम में एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ जिंदगी का हर एक पल को एंजॉय कीजिए। हमेशा याद रखिए दोस्तों, मौसम चाहे बाहर का हो या बरसात का, आपके दिल का मौसम हमेशा खुशगवार रहना चाहिए। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
2: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
1: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
2: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
2: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई हैं। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना

0: योजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कूनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। दी ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026

0: विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूरसन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
5: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
6: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रॉन्ग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अवर कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
9: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
8: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग 3 इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS दूनागिरी, INS संशोधक एंड INS अग्रे एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता यस्टरडे। Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
9: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
8: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base, and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
10: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personnel and tourist guides.

दोस्तों दिल्ली से अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी से देश और दुनिया की ताजातरीन खबरें। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का जहां चौकाचौन है, रंग है,

0: अब वक्त हो चला है हमारे कैपिटल सिटी की धड़कनों से जुड़ने का, एक नई सुबह की धूप में ज्ञान और हसीन बातों का रंग खोलने का। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब मैं लेकर हाजिर हूं आपकी पसंदीदा इन्फॉर्मेटिव और कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

दोस्तों हमारा प्रोग्राम हेलो ईटानगर हमेशा कोशिश करता है कि आप तक ना सिर्फ मनोरंजन पहुंचे बल्कि कुछ ऐसी एजुकेशनल और जरूरी बातें भी पहुंचे जो हमारी जिंदगी और हमारी धरती से जुड़ी हो। और जब हम बात अपनी धरती की करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आते हैं है हमारे ये हसीन गाने और खूबसूरत पहाड़ी जंगल। दोस्तों आज का दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद खास है। आज 22 जून है यानी वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती के लिए हरे भरे फेफड़े हमारी जिंदगी रहने के लिए कितनी जरूरी है। आज के इस शो में हम रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ ऐसी अमेजिंग और एजुकेशनल बातें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए ज्ञान और जानकारी के इस बेहतरीन सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद फ्रेश और खूबसूरत गीत के साथ। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं अभी हाजिर होती हूँ जानकारी के खजाने के साथ।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch smart play pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: वेलकम पे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर हेलो ईटानगर। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे है, तो चलिए थोड़ा एजुकेशनल मोड ऑन करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये रेन फॉरेस्ट होते क्या हैं और इनका हमारे लाइफ में क्या महत्व है। रेन फॉरेस्ट यानी वो घने जंगल जहां साल भर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये जंगलात पूरी दुनिया की जमीन का सिर्फ 6% हिस्सा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 50% से ज्यादा जानवर और प्लांट्स की प्रजातियां इन्हीं जंगलों में पाई जाती है। इन्हें धरती का बायोलॉजिकल मेल्टिंग पॉट भी कहा जाता है। इनका सबसे बड़ा काम है हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस करना। रेन फॉरेस्ट पूरे ग्लोब के वेदर और रेनफॉल पैटर्न्स को कंट्रोल करते हैं। अगर ये जंगल नहीं होंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि हमारी धरती एक तंदूर की तरह तपने लगेगी। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नाम तो आप सबने सुना ही होगा।

जिसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि वो अकेले पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे भारत और हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी एक बेहद अनमोल रेन फॉरेस्ट का हिस्सा है? इस बारे में बात करेंगे एक और सुपरहिट गाने के बाद। सुनिए गाना।

दोस्तों जब भी हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं हमारे दिमाग में अमेज़न या अफ्रीका के जंगल आते हैं, लेकिन आज वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे पर हमारे लिए सबसे बड़ी एजुकेशन और प्राउड करने वाली बात यह है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, जिसमें हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश और आसाम शामिल है, यहाँ जोदीहिंग देहिंग पटकाए और हमारे स्टेट के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन जंगलों की अहमियत समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के 25% से ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन जो हम खाते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स इन्हीं रेन फॉरेस्ट के प्लांट से आते हैं। कैंसर से लेकर आम बीमारियों तक की दवाई का राज इन्हीं पौधों में छुपा है। आजकल डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज की वजह से हर मिनट में लगभग 40 फुटबॉल फील्ड्स के बराबर रेन फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगले 100 सालों में ये पूरी तरह गायब हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोकल एनवायरनमेंट को बचाएं, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक के इस्तेमाल कम से कम करें। हमारा अरुणाचल वैसे ही अपनी ग्रीनरी के लिए जाना जाता है। इस धरोहर को संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए इस इन्फॉर्मेटिव ज्ञान के बाद आपकी सुबह को और बेहतरीन बनाने के लिए प्ले करती हूं आज का ये तीसरा और आखिरी गाना।

दोस्तों ये था हेलो ईटानगर, उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। यह आकाशवाणी ईटानगर का आरएन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रपति के नवंबर 2025 में अफ्रीकी देश बोत्सवाना की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान 8 चीतों के प्रतीकात्मक हस्तांतरण किया गया था। इन चीतों को इस वर्ष फरवरी में परियोजना के नवीनतम चरण के तहत कुनो लाया गया था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेत्सेग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर वो चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे और इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत हासिल की। भारत की ओर से युवराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली से ताजा तरीन खबरें। खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया में कदम रखने का, जहां चकाचौंध है, बेइंतहा ड्रामा है, थोड़ी सी चुलबुली शरारत है और ढेर सारी नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट है। पेश है सबसे एनर्जेटिक और फिल्मों के रंग से बड़ा ये कार्यक्रम फिल्मी गपशप। अरुणाचल के मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह सुबह देश और दुनिया की बड़ी खबरें तो हमने सुन ली, लेकिन जब तक बॉलीवुड और सिनेमा की थोड़ी गर्मा गर्म चटपटी गपशप ना मिले, तब तक इस दिन की शुरुआत बिल्कुल अधूरी से लगती है। आज की खूबसूरत सुबह मुंबई से लेकर ग्लोबल बॉक्स ऑफिस तक ऐसी उथल पुथल मची हुई है कि ऐसी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बिग बजट मूवीज की शॉकिंग अनाउंसमेंट से लेकर थिएटर्स में चल रही धमाकेदार कमाई तक सब कुछ लेकर आई हूं आज के इस महासेगमेंट में। तो चलिए दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का सफर बेहद मजेदार होने वाला है। इस ग्लैमर से भरे सफर की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की एकदम खूबसूरत गाने के साथ।

दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस और बड़े पर्दे की, जहां इस वक्त एक अलग ही लेवल का तैयारी हो चुकी है। अगर हम बिल्कुल फ्रेश अपडेट्स की बात करें तो इस साल फरहान अख्तर की मेगा एक्शन थ्रिलर डोन 3 को लेकर बहुत बड़ा अपडेट आया है। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान की आने वाले फिल्म किंग के सेट्स से कुछ बहुत ही धांसू एक्शन लुक्स लीक सामने आए हैं। सुहाना खान के रो एक्शन सीक्वेंस और किंग खान का नया लॉन्ग हेयर गैंगस्टर अवतार देखकर इंटरनेट पर हल्ला मच गया है। टिकट्स की एडवांस बुकिंग और राइट्स को लेकर अभी से ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच मारामारी शुरू हो गई है। चलिए बॉक्स ऑफिस के इस गर्म माहौल को थोड़ा और हसीन बनाते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: दोस्तों, रिदी की दुनिया में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जिसका चर्चा इस साल हर एक जुबान पर है। नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण। रणवीर कपूर और सई पल्लवी की इस माइथोलॉजिकल एपिक का एक छोटा सा वीएफएक्स स्नेक पीक इंटरनल सर्कल्स में दिखाया गया है। जो लोग वहां मौजूद थे उनका कहना है कि हॉलीवुड की फिल्मों को भी इसके आगे भूल जाएंगे। रणवीर कपूर ने लॉर्ड राम के रोल के लिए जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है उसकी फोटोज भी काफी वायरल हुए थे। सिनेमा बदल रहा है दोस्तों, और हमारे भारत की सदियों पुरानी कहानियों अब ग्लोबल स्टैंडर्ड पर पूरे विश्व के सामने आने वाली है। चलिए इसी बड़ी खबर के जोश में सुनते हैं एक और मधुर गीत।
1: एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: over.
1: Please.

0: दोस्तों, अगर आप थिएटर नहीं जा पा रहे हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल स्ट्रीमिंग पर भी इस हफ्ते बड़ा बवाल मच गया है। सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेजन प्राइम से, जहां अली फैजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर की नई इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर सीरीज शार्क ने आते ही सबके होश उड़ा दिए हैं। ये शो इस वक्त डिजिटल स्ट्रीमिंग पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोनी लिव पर मिश्रा परिवार फिर से लौट आया है हमारी सबकी प्यारी वेब सीरीज गुडलक सीजन 5 के साथ। फिर से वही हार्टवार्मिंग मोमेंट्स और रिलेटेबल मिडिल क्लास कहानी देखकर फैंस सोशल मीडिया पर मीम्स और तारीफों की बात ला चुके हैं। तो चलिए, ओटीटी के इस जबरदस्त ड्रामे के बाद मूड को थोड़ा लाइट और रोमांटिक करते हैं। प्ले करती हूँ ये अगला गीत।
1: करती हूँ मिन्नतें

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी कपशप। अब बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी और एकदम गर्मा गर्म खबर की, जो पूरे इंटरनेट पर तबाही मचाए हुए है। आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ की आने वाली वायर स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फीमेल लेड फिल्म अल्फा का ट्रेलर आ चुका है, जहां आलिया एक फियर्स असासिन सीता के रूप में बॉबी देओल से भिड़ती हुई नजर आ रही है। फिल्म जुलाई 3, 2026 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो परसों आया, क्योंकि समय रैना के सुपरहिट कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 2 के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में आलिया भट्ट और शार्वरी अपनी फिल्म को प्रमोट करने पहुंची। समय ने अपने सतीक अंदाज में आलिया को उनकी पिछली फिल्म जिगरा और उनके कांच रेत कार्पेट लुक को लेकर ऐसा जबरदस्त और सैविज रोस्ट किया कि वहां बैठी ऑडियंस हंस कर पागल हो गए। आशीष चंचलानी ने भी सोशल मीडिया पर समय का बचाव किया है, क्योंकि ये एपिसोड YouTube पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए इसी ताजे तरीन बवाल के जोश में सुनते हैं आज का ये अगला गाना।

दोस्तों बात करते हैं थोड़ी सी गर्मा गर्म कॉन्ट्रोवर्सीज और इनसाइडर गॉसिप्स की। संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म लव एंड वार के सेट से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक वर्कर की जान चली गई है और अब फिल्म बॉडीज भंसाली से 50 लाख कंपनसेशन की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से सेट पर काफी तनाव का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ कल रात एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी के प्री वेडिंग बैच में शाहरुख खान ने अपने पुराने गाने कोई मिलिया पर ऐसा डांस किया कि उनका वीडियो वायरल हो गया। इस इवेंट में अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर भी शामिल हुए थे। चलिए इस चटपटी खबरों के बीच थोड़ा सा संगीत का तड़का और लगाते हैं। सुनिए ये थोड़ा सा हटके और पुरानी यादों को ताजा करने वाला

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों, थिएटर्स में चल रहे घुमासान मुकाबले की बात करें तो अनुराग कश्यप की डार्क क्राइम ट्रेलर बंदर में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है। फैंस कह रहे हैं कि एनिमल के बाद ये बॉबी पाजी का करियर डिफाइनिंग रोल है और उनका ये हौसला उड़ाने वाला अवतार थिएटर्स में खूब धमाल मचा रहा है। और दूसरी तरफ इस हफ्ते के आखिरी में यानी 26 जून को पूरे देश में आने वाला है इस साल का सबसे बड़ा कॉमिक स्पेक्टिकल अक्षय कुमार और एक बेहद मैसिव स्टार कास्ट की फिल्म वेलकम टू द जंगल। पैपी म्यूजिक, क्रेजी जंगल, सर्वाइवल स्टंट और ढेर सारी पागलपंती के साथ ये मास एंटरटेनर अब एडवांस बुकिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है। तो इसी दासू मास एनर्जी के साथ सुनिए आज का आखिरी सुपरहिट गाना।

दोस्तों गाने की इस धमाकेदार एनर्जी के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस महासेगमेंट यानी फिल्मी गपशप को यहीं पर समाप्त करने का। उम्मीद करती हूं कि इस सिनेमा का बॉक्स ऑफिस सुनामी वेलकम टू द जंगल की एक्साइटमेंट और बंदर का बवाल सुनकर आपको मजा आया होगा। सिनेमा से जुड़े रहिए, खुश रहिए और जिंदगी के हर दिन को एक बेहद हिट ब्लॉकबस्टर की तरह जिये।

दोस्तों ये थी फिल्मी गपशप, उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप अब सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना किसी भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समुद्री का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने उद्यान के चीते प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री बी बत्सेतिक के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वे 24 और 25 जून को दक्षिण कोरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता होगी। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जीडी वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडलों के बीच बातचीत जारी है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों बोल रही थी कि इस बेहद खूबसूरत और जज्बाती गाने के बीच मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है और इस सुहाने सिलसिले को थोड़ा पहले ही समाप्त करना पड़ रहा है। वक्त पर मेरी कोई जोर नहीं है और घड़ी की सुई आगे बढ़ चुकी है। टाइम लिमिट की वजह से मुझे इस गाने को बीच में ही रोकना पड़ा और बेहद माफी चाहती हूँ दोस्तों कि मैं आज की बाकी बची हुई रिक्वेस्ट और गाने प्ले नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिक्र की बिल्कुल कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपका ये दोस्त और आपका अपना शो कल फिर हाजिर होगा बिल्कुल सही वक्त पर। जो भी गाने आज छूट गए हैं वो कल की आरजे उसे जरूर आपकी रिक्वेस्ट को प्ले करेंगे।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा यह संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गैरत और तकनीकी अभियंता दिनयोग। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा। आपसे लेकर शाम 4:20 तक आरजे दुनिया के साथ, तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की इस यात्रा को इन नए पोतों से और गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत की प्रमुख

0: पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। इस परियोजना का उद्देश्य देश में विलुप्त हो रही वन्य जीवों की प्रजाति को फिर से बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति ने उद्यान के चीता प्रबंधन क्षेत्र का दौरा किया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का इलाज जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार लगभग 32 यात्रियों वाली उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और घायलों के तीव्र स्वस्थ होने की कामना की है। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगोलिया में श्री जयशंकर विदेश मंत्री बी बत्सिसिग के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 24 और 25 जून को वे दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ वार्ता करेंगे। डॉ जयशंकर दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित जेजू शांति और समृद्धि मंच में मुख्य भाषण भी देंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका तथा ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन को पूर्णतः शांत करने का साधन है। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडम में एफआईएच प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा करने के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: Prime Minister Modi made these remarks after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak and INS Agreh at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach shipbuilders and engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. India will host the two-day break.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे याजो के साथ। उम्मीद करती हूँ आरजे याजो के साथ आपका सफर बहुत ही मनोरंजक रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया। दोस्तों, सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक तीतांगजंग तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम। दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें।

दोस्तों आज की दूसरी प्रसारण सभा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूं। आज के इस दूसरी प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से लेकर 11:30 तक आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म लहर। 11:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। 12:00 से लेकर 12:10 तक आप बारी बारी से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिन्दी एवं अंग्रेजी में समाचार। 12:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स। हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला आप सुन पाएंगे 12:30 पर। दोपहर के 1:00 आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोपहर के 2:00 से लेकर 2:30 तक आप बारी बारी से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3:00 आप सुन पाएंगे विश्व का मंच श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताइक हमती श्रोताओं का कार्यक्रम। पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। 3:40 पर आप सुन पाएंगे वंचो श्रोताओं का समाचार। 3:45 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम। 4:00 आप सुन पाएंगे ईद उमिश्मीर श्रोताओं का समाचार। 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम और सभा के अंत में 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो दोस्तों ये थे अब से लेकर शाम के 4:20 तक प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

इसी के साथ ही दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर। फिल्म लहर में पहला गाना सुनते हैं खत्ता मीठा फिल्म से सजदे की है लाखों, के और सुनिधि चौहान की आवाजों में।

दोस्तों, फिल्म लहर कार्यक्रम में अगला गीत आप सुन पाएंगे ऊंचाई फिल्म का किटी को। और दोस्तों, ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक ट्रैक नहीं है बल्कि हिमालय की खूबसूरती को एक अनोखे अंदाज में पेश करती है। किटी को में किटी नेपाली शब्द है जिसका मतलब होता है लड़की। इस गाने में गीतकार नकाश अजीज ने हिमालय को एक खूबसूरत लड़की के रूप में देखा है। कभी उसका बदन बर्फ की तरह ठंडा और सफेद लगता है तो कभी सूरज की लाली से सुर्ख अगन जैसा। उसकी चोटी चांदी की जैसे बॉल हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों की तरफ इशारा करता है और उसके बालों में घाता पहाड़ों पर चाय बादलों की तस्वीर पेश करता है। यानी ये गाना असल में हिमालय के प्यार और उसकी अद्भुत सुंदरता को सलाम करता है। और साथ ही दोस्तों, ये गाना सिर्फ हिमालय की खूबसूरती का जिक्र नहीं करता बल्कि दोस्ती, सपनों और जज्बे की भी कहानी बयां करता है। फिल्म में दोस्तों का

0: दूसरे से के साथ ही आज का फिल्मी लहर कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम।
1: Hello everyone, this is Kansan, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. In this session, we slow things down and turn inward. These are the songs that don't need to be loud to be powerful. They speak softly yet leave a lasting impact. So we begin with a song that feels like home in itself. It's familiar, comforting, and filled with a sense of belonging. Here's Take Me Home, Country Road by John Dever. Please enjoy.

दस्तों आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों, दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का

मरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्किक से साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स, जहां दोस्तों हर गीत की एक कहानी होती है और हर कहानी को फिल्मों का सहारा मिले ये जरूरी नहीं होती। कुछ गाने अपनी सादगी, अपनी आवाज और अपने जज्बातों के दम पर ही लोगों के दिलों तक पहुंच जाते हैं। आज के इस खास सेगमेंट में हम लेकर आए हैं ऐसे ही कुछ नॉन फिल्म सॉन्ग्स, जो वक्त के साथ और भी हसीन लगने लगती है। तो बने रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए नॉन फिल्म सॉन्ग्स गानों को। और आज के इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही टैलेंटेड और वर्सेटाइल सिंगर के साथ। सुनते हैं एक तू ही नमाब ऋतु रुबा की आवाज में।

जहां दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स। और जहां दोस्तों कुछ गाने सिर्फ हिट नहीं होते बल्कि एक ट्रेंड बन जाती है। लाल लाल छोरी ची बांगड़ी भी उन्हीं गानों में से एक है। मराठी म्यूजिक इंडस्ट्री से निकला ये गीत देखते ही देखते सोशल मीडिया रील्स, शॉर्ट वीडियोस और डांस परफॉर्मेंसेस का फेवरेट बन गया। और इसकी केची हुक लाइन और एनर्जेटिक बीट्स ने हर उम्र के लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। और इस गाने ने यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज हासिल किए और लगातार वायरल वीडियोस का हिस्सा बना रहा। सोशल मीडिया पर बच्चों से लेकर बड़े तक इस गाने पर डांस करते नजर आए, जिसने इसकी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा दिया। तो चलिए दोस्तों, अब आप भी इस वायरल सेंसेशन के रंग में रंग जाए और सुनिए संजू राठौड़ की सुपरहिट नॉन फिल्म सॉन्ग लाल लाल छोरी ची बांगड़ी।

मैं रहूं या ना रहूं, आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज में। इसी के साथ ही दोस्तों, नॉन फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों के लिए सजाया गया ये खास कार्यक्रम गीतमाला में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, सुनते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी उदित नारायण की आवाज में।

गीतमाला कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं वीर ज़ारा फिल्म का ऐसा देश है मेरा। इस गाने के बोल भारत की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली, रंग बिरंगी परंपराओं और अपनापन को खूबसूरती से बयां करता है। ये गीत सिर्फ देशभक्ति की बात नहीं करता, बल्कि ये बताता है कि हमारी असली पहचान, हमारी संस्कृति, मेहमान नवाजी और दिलों को जोड़ने वाली मोहब्बत में बसती है। तो दोस्तों, आइए अपने देश की खूबसूरती और अपनापन को महसूस करते हैं और सुनते हैं वीर ज़ारा फिल्म का ये सदाबहार गीत ऐसा देश है मेरा। लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मन और प्रीता मजुमदार की आवाजों में।

दोस्तों, अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला। दोस्तों, बॉलीवुड में कई फिल्में हमें देश प्रेम को अलग अलग नजरिए से दिखाते हैं और एक ऐसी ही फिल्म है स्वदेश। इस फिल्म में मोहन बगराबा नाम का एक सफल साइंटिस्ट विदेश से वापस अपने देश आता है और समझता है कि असली बदलाव बाहर से नहीं अपने लोगों के बीच रहकर लाया जा सकता है। ये फिल्म हमें याद दिलाती है कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने में ही नहीं बल्कि अपने देश को बेहतर बनाने में भी होती है और इसीलिए कई दर्शक और फिल्म प्रेमी इस फिल्म को बहुत ही रियलिस्टिक और दिल को छू लेने वाली पेट्रियोटिक फिल्म मानते हैं। तो आइए सुनते हैं स्वदेश फिल्म का यूं ही चला, उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज में।

0: दोस्तों इसी के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल STF ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। STF के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री B32 के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज आधा प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia today for an official two-day visit. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements to advance the special partnership between India and Mongolia. During the visit, the External Affairs Minister will meet with the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Batsetseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shivpur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. Earlier, the president went on a safari in Kuno National Park and reviewed the progress of the cheetah reintroduction project. She also visited the Cheetah Command and Control Center, where she viewed an exhibition on Project Cheetah and was briefed on the monitoring, tracking and conservation measures being undertaken for the animals. India will host the two-day BRICS National Security Advisors meeting in New Delhi beginning today. National Security Advisor Ajit Doval will chair the meeting. A report.
3: During the meeting, the National Security Advisors and heads of delegation of BRICS member countries will exchange views on the theme, Non-Traditional Security Challenges Confronting the World Today. They will discuss the rapidly evolving nature of national security challenges as well as the role of new technologies in emerging security threats. The National Security Advisors and heads of delegation will also review the outcomes of the recently held BRICS joint working groups on counter-terrorism and on security in the use of information and communication technologies. Rishu Jaiswal, Akashvani News, Delhi.
2: In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi, and a fire-income-robbery case in Chandor district. In Jharkhand, at least 8 people were killed and several others injured in multiple lightning strikes reported from different parts of the state during the past 24 hours. The incidents were reported from Ramgarh, Giridih, Khunti, Deoghar, Dhanbad and Sahibganj districts. The injured have been admitted to hospitals for treatment. Officials said that some of them are in serious condition. Meanwhile, authorities have advised people to remain alert during thunderstorms and adverse weather conditions. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. IMD has also predicted heavy rainfall conditions at isolated places over sub-Himalayan West Bengal, Karnataka, Telangana, Kerala, Goa, Odisha and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Bihar, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Lakshadweep, Puducherry and Karaikal during the day. The Met Department has also forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Andaman and Nicobar Islands, Jammu and Kashmir and Ladakh today. An explosion ripped through Qatar's key natural gas export infrastructure injuring at least 54 people, while 18 others remain missing. According to official reports, the blast occurred in the Ras Laffan industrial area last night, one of the world's most important energy hubs. During ongoing efforts to resume operations at the facility following earlier disruptions linked to regional conflict, the incident triggered a major fire at the Barzan gas supply facility, prompting emergency response teams to rush to the site. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in afternoon trade. Today, the Sensex climbed 360 points to 77,163, while the Nifty rose 105 points to 24,118 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात. और दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो फरमाइश.
4: हेलो फरमाइश
5: सर जी, नमस्कार.
4: नमस्कार. हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है आपका.
5: धन्यवाद सर. आपको कैसे हो?
4: जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ. आप सुनाइए, आप कैसे हो?
5: बिल्कुल, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ. और आपके एक प्रोग्राम सुनता हूँ, रेडियो चल रहा है, काम कर रहा हूँ, कपड़े सिलता हूँ मैं. दुकान
4: अच्छा.
5: पे काम कर रहा था तो मैं उसका रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ.
4: क्या बात है जी, काम के वक्त भी आपने हमें याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद. अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं. ओके, तो कहिए आज आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
5: हमारे यहाँ धूप है सर.
4: अच्छा, धूप खिली हुई है
5: जी, गर्मी हो रही है, धूप है.
4: अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ तो बारिश है, सुहाना मौसम है. चलिए कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
5: फिल्म का नाम है धुंध.
4: ओके.
5: मरना रास आया, जीना मन भाया, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ.
4: जी जरूर सुनाएंगे. और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
5: हमारे एक सबसे अच्छे मित्र है जो हमको बताया करते हैं, मतलब कि आज यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है.
4: अच्छा.
5: तो वो है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी, नाना केड़ी बस स्टैंड है उज्जैन से. और हमारे रमेश पात्रे जी है, उन्होंने भी बताया था कि आज वो रिकॉर्डिंग होगी.
4: अच्छा जी
5: जी.
4: तो दोनों को हम
5: परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, शिव लोहार है विदिशा से, पूनम है कानपुर से, और राकेश है शिमला से, अमन भस्माकारी गोल्डी जी, और अमर सिंह साहू जी है बिमल असम से.
4: इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
5: जी जी.
4: तो जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए. हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं.
5: जी.

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर,
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपाठ डिस्ट्रिक्ट
0: जी
1: कचर
0: देवजीत दा, कॉल करने
1: असम
0: के लिए
1: से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। असम से।
1: और
0: और
1: मैं तो 2 हफ्ते के बाद आज तो ट्राई किया
0: जी, इसे
1: और
0: हाँ इस तरह से
1: मेरा
0: थोड़ा
1: फोन लग
0: गैप देने
1: गया,
0: से अच्छा
1: बहुत अच्छा
0: लगा।
1: हो गया।
0: जी, तो देवजीत दा, आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम अभी तो बारिश नहीं है, अच्छा
0: अच्छा,
1: है।
0: ओ अच्छा, मौसम ठीक है ना?
1: तो मैं आपसे 2 लाइन बोलूंगा।
0: जी जरूर जरूर।
1: कुछ नाम दिल से मिटे नहीं जाते हैं, कोई दोस्ती को चेहरे बुलाया ना जाते हैं, मौलासा तो ये मेरे दोस्ती दोस्ती के शिरा में टैन हो जाती है।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात कही आपने दोस्ती के बारे में, और इसी तरह से हमारा दोस्ताना कायम रहे, हम यही दुआ करते हैं। तो देवजी दा कही, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: आज मुझे गाना सुना के दीजिए, फिल्म का नाम है कल की आवाज।
0: कल की आवाज, और गाने के बोल।
1: गाने के बोल है, आज रात चांदनी है बस तुम मेरे साथ हो, ये गाना
0: जी सुनाएंगे। और
1: कुमार सानू और अलका याग्निक ने ये गीत
0: ओके
1: गाया है। तो
0: जी, जरूर सुनाएंगे।
1: मैं कुछ ये गाना परिवार में डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ
1: पहले
0: जी जरूर।
1: मेरा है पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माता जी शिल्पी दास, बड़े भैया है जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये
0: जी
1: गाना कुछ मैं दोस्तों के साथ डेडिकेट करूंगा। पहले
0: जी
1: मेरा बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य और दीदी है छोटे बाबा भट्टाचार्य जी और रामतो भाई और है बप्पन दादा, प्रेमोजीत दादा और दादा है राजा मालाकार और है दादा है जवाहरलाल बर्मन और है मेरा दादा है शारदा प्रजापति परिचय। मैं इसको बात सुना है और ये सुनेगा और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे से तक गाना डेडिकेट करूंगा।
0: ओके, तो देवजीत दा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कल की आवाज़
1: आपके
0: फिल्म
1: साथ
0: से।
1: बातें करके मुझे बहुत अच्छा

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है
1: सर। धन्यवाद सर, आपका हाल कैसा है?
0: जी मैं

0: बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आपका हाल कैसा है?
1: मेरा भी बहुत अच्छा है सर। आज पहली बार फोन लगा है तो बहुत अच्छा लगा है।
0: अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: सर मैं विश्वनाथ जिला गहपुर असम से बोल रहा हूँ, खरदवारा।
0: अच्छा, खरदवारा।
1: हाँ।
0: ओके, पहली बार आपने कॉल किया है। जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करते हुए।
1: हाँ
0: और
1: सर,
0: जी,
1: मेरा भी बहुत अच्छा लगा है। आप लोगों के साथ पहली बार मुलाकात है।
0: ओके, तो आगे भी आप जुड़ते रहिए, आगे भी कॉल कीजिएगा, हम
1: हाँ हाँ
0: आपको
1: सर।
0: अच्छे अच्छे गाने जरूर सुनाएंगे। तो हरिद्वारा, हाँ कहिए।
1: सर रिफ्यूजी फिल्म के अलका याग्निक और सोनू निगम के आवाज में पंछी नदिया पर बनी, ये किस सुना दीजिएगा।
0: पंछी नदिया, वाह, बहुत ही बढ़िया गीत
1: हाँ
0: आपने चुना है जी।
1: और
0: और
1: सर ये गीत को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ
0: हाँ जी,
1: माइकल मुंडा, बिजल बसुमतारी, अमल बसुमतारी, दिनेश शर्मा, निरुत्पल द्वारा और सभी हेलो फरमाइश सुनने श्रोताओं का मैं ये डेडिकेट करना चाहती हूँ।
0: ओके, सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हरिद्वारा जी, पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपने पहली बार हमें कॉल किया है और
1: हाँ
0: आपको
1: सर,
0: सुना रहे हैं आपके पसंद का गाना रिफ्यूजी फिल्म से।
1: हाँ सर, थैंक यू।
0: ओके, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदरणीय घाघरा साहब
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। मानवर आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो और कहाँ से बोल रहे हो फिलहाल?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
0: शारदा
1: शारदा प्रसाद
0: प्रसाद
1: तिरुपति श्री
0: जी।
1: राधा की मथुरा उत्तर प्रदेश से आदरणीय साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से। और
1: जी
0: जी कहिए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मानवर, इस वक्त मथुरा वृंदावन का मौसम बहुत ही गर्म है और खिली खिली चिलचिलाती हुई, और तापमान का जहां तक सवाल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है। और
0: ओहो
1: सुबह सुबह

0: जी जरूर
1: ये
0: सुनाएंगे।
1: और नई वाली बरसात है।
0: अच्छा जी जी जी और किन दोस्तों के
1: जी
0: साथ सुनना चाहेंगे शारदा प्रसाद जी?
1: सर्वप्रथम मैं जितना सा सुरीला बरसात का गाना आज साहब को शारदा समर्पित करते हुए नूरी मैम को याद करता हूँ
0: जी।
1: और आकाशवाणी ईटानगर परिवार के साथ साथ मेरा ब्रज रेडियो श्रोता मित्र हैं अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, राजू लवानिया है, वर्मा है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम नारी है, राकेश कुमार जी, और जम्मू कश्मीर से केशव प्रसाद शर्मा है, डॉक्टर सितारे हैं, और इस तरह से आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से आरणी वाग्रा साहब के साथ में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना बरसात के दिन आए, बरसात फिल्म से। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।
0: नमस्कार।
2: शरारे पीछे हैं ये सावन की रिंग झिमझड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं ये मद...

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर आपका भी स्वागत करता हूँ। और मैं श्रीकांत जोशी
0: जी,
1: जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र सर।
0: जी श्रीकांत जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें कॉल मिलाया।
1: हाँ, यानी महीने में एक ही बार कॉल करता हूँ मैं।
0: अच्छा, क्या बात है, श्रोताओं को मौका देते हैं आप।
1: और रिचार्ज खत्म होने के बाद नहीं कॉल करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: रिचार्ज मैं एक महीने का करता हूँ ना। एक बार रिचार्ज किया तो एक महीने का नहीं आता सर, वो तो 28 दिन का।
0: ओहो, जी जी जी जी, हाँ आजकल वैसा ही है, 30 दिन का नहीं होता है।
1: हर एक महीने में रिचार्ज करता हूँ और महीने में एक बार कॉल करने का मुझे जैसी बात है कि हमारे अन्य श्रोता है उनको भी कॉल करने का मौका
0: जी
1: मिलना
0: जी जी
1: चाहिए।
0: जी हाँ, नए श्रोताओं को कॉल करने का मौका मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छी
1: और
0: बात कही आपने।
1: ईटानगर में या अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, हम समाचार सुनते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक मानसून आया था लेकिन बारिश नहीं हो रही सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, हमारे यहाँ तो बारिश हो ही रही है।
1: महाराष्ट्र में बारिश नहीं हो रही, इसलिए
0: अच्छा
1: क्या है, कभी कभी फोन करने का मन भी नहीं होता, तो भी मैंने कर दी।
0: बारिश नहीं होने से आप क्यों कॉल नहीं करेंगे?
1: नहीं तो
0: गर्मी ज्यादा
1: आपके यहाँ
0: होती है
1: बारिश
0: ना।
1: हो रही ना, तो कोई भी बारिश का गाना सुनवा दीजिए, मैं सुनूंगा।
0: अच्छा, बारिश का गाना आप सुनना चाहते हैं।
1: जी हाँ
0: ओके, हाँ जी जरूर।

0: सुनाएंगे और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे बारिश वाले गीत को?
1: सर पहले तो आपके लिए और जो मैडम जी आते हैं उनका तो
0: नूरी,
1: नाम है
0: नूरी
1: मैडम, भी डिलीकेट कर रहा हूँ
0: जी।
1: और आसाम के श्रोता है अनुज कुमार भट्टाचार्य, सतुपा भट्टाचार्य उनके लिए, और अर्जुन प्रधान और पप्पूराम घाट के लिए, और जितने भी श्रोता रेगुलर प्रोग्राम सुनते हैं उन सब के लिए,
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो श्रीकांत जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना बारिश वाला।
1: धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत अच्छे अवसर से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं।
0: क्या बात है, बहुत धन्य।
1: आपको तो बहुत सालों से सुन रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से श्रोताओं से पेश आते हैं, आवाज का तो खैर धनी है आप, इसमें क्या कहना है।
0: जी कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से बातचीत हो जाए।
1: आपकी सर दिल से करूँ, मैं आपका कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हमारे ईटानगर में ऐसे भी उद्घोषक बेहतरीन है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतने तारीफ के लिए।
1: इसलिए मैंने कहा, बहुत सारे रेडियो स्टेशन सरकारी और प्राइवेट चैनल लगाता हूँ, उस सब से बातचीत होती है।
0: अच्छा जी,
1: उसमें मैं आपको भी मैं रखता हूँ, एक बेहतरीन उद्घोषक में आप शुमार होते हैं मेरी नजर में।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत दिल खुश कर दिया आपने। जी तो
1: जी सही सर मैं कह रहा हूँ, कहीं से गलत नहीं बोला है।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जी। कोशिश करता रहूंगा कि इसी तरह से आप सभी से पेश आऊं।
1: जी जी जी पेश तो कितना साल से आपको सुन रहे हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी तो पहले अपना परिचय हो जाए।
1: मैं शेख जफर हसन, क्वाट जिला रोहतास बिहार।
0: जी शेख जफर हसन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर, मजे में हैं।
0: ओके जी, हमेशा अच्छा रहिए, मजे में रहिए और रेडियो सुनते रहिए।
1: ईश्वर की कृपा है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: आप लोग एक दुआएं हैं।
0: जी ऊपर वाले के आशीर्वाद है जी। और कहिए आज कैसा है आपके वहाँ का मौसम?
1: सर अब क्या कहा जाए, पूरे बिहार गर्मी की चपेट में, तो सुनता हूँ रेडियो, उसमें तापमान का बताया जाता है सब 40 से ऊपर, 40 डिग्री 41-42, हमारे तो कल तक 42 था।
0: अच्छा जी जी जी।
1: हाँ और अभी तो देखिए आपसे बात हो रही है, अभी तो करीब करीब 10 मिनट से बादल छाया हुआ है।
0: अच्छा जी, तो बारिश होने की संभावना है?
1: हाँ देखिए अब तो अभी तो नहीं है, लेकिन बादल छाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो हो सकता है दोपहर में या शाम तक हो जाए।
0: अच्छा जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है अगर बारिश होती है।
1: आपको खाड़ी से उठा है तूफान, और उधर से केरला शायद अरब सागर से उधर से भी उठा है।
0: अच्छा जी जी जी।
1: और आप लोग जहाँ पर है ईटानगर और राजधानी है, तो वहाँ तो मौसम तो खुशगवार ही होगा।
0: जी यहाँ तो बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: लगातार
1: ही होगा।
0: जी जी जी जी, बहुत ही बढ़िया मौसम है। जी तो शेख जफर जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो अब कहिए आज
1: तुमको भी लगा सर, अब खुश कर देता हूँ, शेर सुनाऊंगा।
0: हाँ जी जी जी, शेर से शुरू हो।
1: हाँ और उसके बाद आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ खास करके
0: जी,
1: कि जो गाना मैं पसंद करूंगा सर, कम से कम रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा दो लाइन।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। हाँ
1: जी, और रही बात की आपको ये दो तीन श्रोता है उनका भी नाम ले लूंगा सर।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: शेर पर
0: ओके जी।
1: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।
0: जिंदगी क्या चीज है, वाह वाह वाह जी, बहुत ही बढ़िया।
1: आखिरी शेर सुन लीजिए
0: जी।
1: डरकर कभी सच बात का इनकार ना करना, मर जाना मगर झूठ का इकरार ना करना। दुनिया में मोहब्बत के गुनहगार बहुत हैं, तुम अपनी मोहब्बत को गुनहगार मत करना।
0: वाह वाह वाह वाह, तो क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया शेर। और अब गाने की फरमाइश हो जाए।
1: जी तो गाने की फरमाइश है, उसी को दो लाइन में गा दूंगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।
0: ओके जी।
1: और ये तो गाया था मोहम्मद रफी, और टूटी फूटी आवाज में सुन लीजिए।
0: सुनाइए सुनाइए, जरूर सुनेंगे।
1: मैंने पूछा चांद से के देख

0: कसम नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। जी
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा गाते हैं आप शेख साहब। जी जी जी
0: नौशाद साहब, यह कहता चलूं
1: जी
0: कि जहां भी कॉल लगती है तो नौशाद तो खैर सब या उसका पहचान चुकी है
1: जी
0: और वो लोग मौका देता है, शेर सुनाते हैं
1: जी
0: और दो लाइन गाना गाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है। जी जी
0: जी, और तो हमारे कुछ दोस्त हैं
1: जी जी जी हाँ जी
0: भदरवा जम्मू कश्मीर के, पुरुषोत्तम कुमार, अनवर बिहारी, गणेश दास बंगाली, और डोडा जम्मू कश्मीर के पंछी राम पुष्कर।
1: जी, इनके साथ आप सुनना चाहते हैं इसे प्यारे से गीत को।
0: जी
1: जी,
0: सर।
1: तो शेख जफर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: हेलो सर, रेखा वर्मा बोल रही हूँ जिनसे। थैंक
0: जी। रेखा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप
1: यू सर। बस बढ़िया हूँ सर, आप कैसे? जी
0: जी? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: सर,
0: और आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी फिलहाल?
1: अभी तो गर्मी लग रही है यहाँ पे। हाँ,
0: अच्छा जी, बारिश हुई नहीं अभी
1: अभी
0: तक?
1: बारिश नहीं हुई है अभी यहाँ पे। कल थोड़े बहुत छींटे वगैरह आए थे पानी के, बाकी
0: अच्छा अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: सब
0: ओके जी। तो रेखा जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: नदिया के पार का सुना दीजिए।
0: नदिया के पार का कौन सा गाना?
1: कौन दिशा में लेके चला रहा है
0: ओके
1: सर?
0: जी, जरूर सुनाएंगे। बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ।
0: ओके, वर्मा साहब के साथ और बच्चों के साथ आप इस गीत को सुनना चाहते हैं
1: जी जी सर, जी
0: जी? तो रेखा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके
1: जी
0: पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी सर।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी सर। जिला विदिशा तहसील नटेरी ग्राम मोहम्मदपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ सर।
0: जी। रवि केवड़ जी, काफी दिनों के बाद आपने कॉल मिलाया।
1: जी सर, बात ही हो रही है और इस वक्त मौसम तो धूप बहुत तेज है सर, बारिश की संभावना तो अभी है नहीं।
0: अच्छा जी।
1: हाँ सर, बारिश हो ही नहीं रही सर अभी।
0: ओके,
1: जी
0: चलिए आशा करते हैं जल्दी बारिश हो आपके वहाँ पे, ताकि आप सभी को गर्मी से राहत मिले।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: सर, लेकिन बारिश की अभी तो कोई वही नक्शे नहीं दिख
0: संभावना
1: रहा
0: नहीं है।
1: सर। क्या है तो मौसम तो होता है सर, गिरता नहीं है लेकिन।
0: ओके जी।
1: हाँ।

0: लेकिन आएगा अभी दो एक दो चार दिन के बाद आना वाला है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा जी, आ जाए तो बहुत ही
0: हाँ
1: अच्छी बात है
0: जी जी
1: जी।
0: जी
1: तो
0: और
1: रवि
0: सर
1: जी,
0: आपका मौसम कैसा है सर?
1: हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है
0: अच्छा
1: जी।
0: चलो अच्छा है, आपके इधर से हमारे इधर भेजिए सर
1: हाँ
0: मुझे।
1: वही, मैं काफी सारे श्रोताओं से बात की थी मैंने, तो मैंने
0: जी
1: कहा कि थोड़ा
0: बिल्कुल
1: थोड़ा भेज दूंगा सभी
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जगह
0: सर,
1: जी।
0: दीजिएगा
1: तो रवि
0: बिल्कुल।
1: जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
0: आज सर फिल्म है हाँ मैंने भी प्यार किया है,
1: ओके।
0: इसमें गाना है वो हम यार है तुम्हारे ऐसे करके कुछ गाने को
1: ओ
0: बोल रहे हैं
1: जी
0: वो
1: जी जी
0: चला
1: हाँ,
0: गया
1: बहुत ही
0: सर।
1: बढ़िया गीत है, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना
0: जी
1: चाहेंगे?
0: पहले नंबर रहेगा सर आपके लिए,
1: धन्यवाद जी।
0: जिसके बाद दोस्त है हमारे प्रदीप साहू जी है, नरेश प्रजापति जी है, बानू महफिल जी है, संतोष राव जी है, भारती राव जी है, उदिता विश्वकर्मा जी है, सुजीता विश्वकर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, मांगीलाल चंदेल जी है, नरेश प्रजापति जी है, और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए रहेगा सर
1: ओके,
0: गाना।
1: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो रवि जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके
0: थैंक यू
1: पसंद का
0: सर,
1: गाना सुना रहे हैं। थैंक यू कॉल करने।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: जी अपना परिचय हो जाए, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं जिलों की नगरी उदयपुर से उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
0: उदयलाल जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, पहली बार जुड़ रहा हूँ।
0: अच्छा पहली बार आप जुड़ रहे हैं ईटानगर में। ओके, तो हम
1: सर।
0: सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: जी सर, धन्यवाद।
0: और उम्मीद करते हैं आगे भी आप जुड़ते रहेंगे हमारे साथ।
1: जरूर सुनेंगे।
0: ओके, जी। और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मेरी एज 74 है।

0: और मैं 50 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: देश की सभी आकाशवाणी में मैं हेलो फरमाइश में फोन लगाता हूँ।
1: अच्छा जी
0: जी सर।
1: ओके, आप सिर्फ गानों के ही प्रोग्राम सुनते हैं या फिर कोई और?
0: नहीं, गानों के प्रोग्राम भी सुनते हैं। स्वास्थ्य वर्धक जो परिचर्चा आती है
1: जी जी जी
0: डॉक्टर से,
1: ओके,
0: वो भी सुनते हैं।
1: अच्छा अच्छा जी, तो कहिए उदयलाल जी, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
0: जी सर, आपकी कसम फिल्म का गीत है किशोर दा की आवाज में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर
1: नहीं आते। जी जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहेंगे आप इस गीत को?
0: जी सर, मेरे दोस्त है राय बोले जी, गंगाधर जी सावनकर, लोकेंद्र जी वर्मा, भगवान सिंह जी परमार और मोहनलाल जी बालोत्रा से, और धीरज भाई, अफजल भाई और एकता रेडियो सत्ता संघ के सभी साथी सुनेंगे।
1: ओके, तो उदयलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना आपकी कसम फिल्म से।
0: धन्यवाद सर
1: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता जी।
0: जय माता दी।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी पूरन वर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए
1: और
0: कैसे
1: सर
0: हैं आप?
1: सुनाओ।
0: जी मैं बढ़िया हूँ, यहाँ सब ठीक ठाक है और बारिश हो रही है झमाझम।
1: ये हमारे यहाँ भी बस कल परसों हुई थी सर बारिश।
0: अच्छा जी।
1: अभी तो मौसम बढ़िया है और अंदर जा रहा चलाता हूँ सर। यहाँ अंदर जा रहा चलता है।
0: अच्छा, ओके। और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में?
1: जी मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। और किसी गाने के बोले, तेरी नजर का तीर मेरे दिल में उतर गया रे, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया, तेरे इश्क में पड़ गया रे, तेरे इश्क में पड़ गया रे। ये गाना
0: इश्क में पड़ गया रे जी, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप इस गीत को?
1: जी सबसे पहले तो आप है
0: धन्यवाद जी।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है और शिवा लोहार है और तमाम श्रोता जो आपके कार्यक्रम में लाइव कॉलर सुनने वाले।
0: ओके, तो पूरन वर्मा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना
1: थैंक यू
0: खुल्लम।
1: सर।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों छोटे से ब्रेक के बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली के साथ और सुन पाएंगे मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार।

0: comes with superstar 9-inch smart play pro plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360 degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों, हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कुनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कुनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के 1 नेता, 1 वार्ड सदस्य, 1 किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ा।

जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्व भर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की।

0: साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। अब बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, सभा के इस भाग में अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिटॉप 90s का। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं नॉस्टैल्जिया की इस खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी का। और पहला गाना सुनते हैं दीवानगी, दीवाना मूवी से। ऐसी दीवानगी देखी नहीं, अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज में।

दोस्तों, अगर बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत और यादगार लव सॉन्ग्स की बात हो तो पहला नशा गाने का नाम जरूर आता है। पहली मोहब्बत का एहसास, हवाओं में उड़ने जैसी फीलिंग और दिल के बेचैनी को जिस खूबसूरती से इस गाने ने बयां किया है ना, वो आज भी दिल को छू जाता है। इस गाने से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि ये कोरियोग्राफर फराह खान के करियर का पहला कोरियोग्राफ सॉन्ग था। जहां दोस्तों, फराह खान ने खुद बताया कि उन्होंने अपना पहला गाना एक्ट्रेस आयशा जुल्खा पर कोरियोग्राफ किया था और इसीलिए ये गाना उनके लिए हमेशा खास रहेगा। और एक मजेदार किस्सा है, फराह खान ने बताया कि पहला नशा गाने को फाइनल करने से पहले 3 अलग अलग हीरोइंस के साथ शूट किया गया था। फिल्म की कास्टिंग में बदलाव होते रहे और आखिरकार आयशा जुल्खा को फाइनल किया गया। जो वर्जन हम आज देखते हैं वही बाद में 90s के सबसे आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग्स में से एक बन गई। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर पहली मोहब्बत के उसी हसीन एहसास में खो जाते हैं। सुनते हैं पहला नशा, पहला खुमार उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में।

दोस्तों, जुम्मा चुम्मा गाना सुन रहे थे आप। दोस्तों, आपको पता है, आपके आप जानते हैं, जब हम फिल्म का ये जुम्मा चुम्मा गाना आया था, तब सबको ऐसा लगा था कि ये गाना खुद अमिताभ बच्चन जी ने गाया है। जी हाँ, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट सामने आती गई और मार्केट्स में कैसेट्स मिलने लगे, जी हाँ दोस्तों, 90s का जमाना है, उस समय कैसेट्स में गाना आया करता था, यूट्यूब पर नहीं। तो जैसे जैसे कैसेट्स मार्केट्स में आती गई, तो सब हैरान रह गए कि आखिर ये कौन है जो हूबहू अमित जी की आवाज में गाना गाता है। तो दोस्तों, वो थे सुदेश भोसले। वैसे तो सुदेश जी ने और भी कई सारे गाने गाए थे, लेकिन बॉलीवुड में पॉपुलैरिटी उन्हें इसी गाने से मिली थी। आइए अब 90s कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गाना, कुछ कुछ होता है फिल्म से, साजन जयगर आए, कुमार सानू, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

दोस्तों इसी के साथ ही आज का 90s का ये सफर यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे मिसमिका मन श्रोताओं का कार्यक्रम। आप सुन पाएंगे 3 बजे, 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। दोस्तों हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेब सिपा सिप सी चुम सी मीटर हो पा चिप चिप हा किलो हर्स मई मु चलांग खाम तई खाम ती हो को मा हो मैने वन तरंग कना लांगनी पीते सोंग हिंग पा साउ टू ने इंगना जी पी मु सोंग हिंग साउ हु नून जून ने साउ सोंग वन चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू वन मंगा मई थर्ड एडिशन खोंग यूनिवर्सल कंपेंशन कप सोंग हिंग साउ हो नाइ नियाति जंग मई फुट हो कनका फुटबॉल टूर्नामेंट नाइ लोकन पा जंग सिंजम ब्रदर यूथ एसोसिएशन फोम लोई मध्यम कौशिप लंग वन पोसन थे खोंग होलीनेस 14 दलाई लामा मई औसी टूर्नामेंट नाइ हिट ऑर्गेनाइज कनका मिनिस्टर कन लोंगलेम रूरल डेवलपमेंट कंसर्न पंचायती राज कॉरपोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट हिची ओजिंग तासिंग लिवलीहुड मार्केट शेट हंगचा सेल हेल्प ग्रुप वन मंगा मई नियाति पासीघाट मई पुटहू कन हका नम हो डिस्ट्रिक्ट लेवल जन कल्याण शिविर थीम पिनाई कचम 12 इयर्स ऑफ ट्रस्ट डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर नम हो प्रोग्राम स्कीम नई कचम हंगचा ह अखे नेचुरल फार्मिंग मई औसी वन अनपुन का वन चिन्ह मई नियाति डी सी कॉन्फ्रेंस हॉल पासीघाट मई हिट ऑर्गेनाइज कनका एम प्रोग्राम नई कचम हंगचा ह अवेयरनेस कुन हिट है हिट ना खनसम कुन सिंग कुन मंग पोंगलोई बेनिफिट खोंग नेचुरल फार्मिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम Soil health management, value addition, livelihood opportunities, khansam, lai an chawong, welfare scheme may ausi nam ho. National Testing Agency khau lau khai ma social media may question paper khong need UG songhing sau hu re-examination nai. Kana masai exam may la. OP kan ka. नई सी एन टी ए खौ लौ खाइमा पेपर लीकेज मई औसी खौ चौ लुक इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर खनसम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज मई औसी सफो औसी एक्शन नई तक औ पिन माइ यौ थुनमा सिपसोंग हा इंटरनेशनल योगा डे मई स्पेयर हेड डिविजन खौ वन मंगा मई स्पेशल योगा सेशन नई नमखे यरगपचू मेनचुका खनसम नमखे सियांग पासीघाट मई तंगन माका टूर एंड क्रिकेट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मई न ग्रुप ए मई मंग साउथ अफ्रीका खौ लुक हुक विकेट मंग इंडिया हौ मई औ हाय कनका टू लेन नई मंगा फैखम मैनचेस्टर मई औलिन कनका नम हो एम सी आई ईटानगर खौ लौ खैमा जिला पपंग परे इसियांग खनसम लोअर दिबांग वैली जिला ने खौ मई ऑरेंज अलर्ट नई तक हई तक यंग मायो खनसम एम सी आई खौ लौ खैमा जिला साउ अन ने खौ मई को येलो अलर्ट नई तक यंग कन मायो नम हो पेनमा फीफा वर्ल्ड कप सोंहिंग साउ हो मई न ग्रुप एच मई मंग के बर्डे खनसम मंग उरुग्रे सोंसेन मई ड्रो कनका टू लिन नई मेनाई नियाति मंग फ्लोरिडा मई औलिन कनका नम हो खनसम चाहंग मने कौखाम तु खाइनाई नम हो मैंने मुई उम मई लुकना चना वा मन चे मई हने थोम तिखा

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों सभा के इस भाग में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड अपडेट के साथ। और बॉलीवुड की दुनिया में इस हफ्ते काफी धमाकेदार अपडेट्स देखने को मिले हैं। कहीं कॉमेडी का तड़का लगा है तो कहीं एक्शन और सस्पेंस ने फैंस के एक्साइटमेंट को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे ट्रेंडिंग बॉलीवुड खबरों पर। और सबसे पहले बात करते हैं धमाल 4 की। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। अजय देवगन, रितेश देशमुख, अर्जुन वर्सी और जावेद जाफरी की गैंग एक बार फिर जबरदस्त ट्रेजर हंट और कॉमेडी कियोस के साथ लौट आई है। ट्रेलर में जंगल एडवेंचर, फनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नॉनस्टॉप मैडनेस देखने को मिल रही है। फैंस इसे क्लासिक धमाल वाइब्स का परफेक्ट कमबैक बता रहे हैं। और दोस्तों ये फिल्म 10 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। YRF स्पाई यूनिवर्स की मच अवेटेड फिल्म अल्फा का ट्रेलर भी इस हफ्ते खूब सुर्खियां बतो रही है। आलिया भट्ट और शर्वरी पावरफुल एक्शन अवतार में नजर आ रही है, जबकि विलेन के रूप में बॉबी डियोल का इंटेंस लुक भी चर्चा में है। ट्रेलर की एक खास बात है ऋतिक रोशन के कबीर कैरेक्टर की झलक, जिसे देखकर फैंस और भी एक्साइटेड हो गए हैं अल्फा मूवी के लिए। और दोस्तों लगता है 2024 शर्वरी के नाम होने वाली है। जी हाँ, मैं वापस आऊंगा। और अल्फा के बज के बीच रिपोर्ट्स आ रही है कि वो डायरेक्टर लवरंजना और कार्तिक आर्यन के अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए भी डिस्कशंस में हैं। इंडस्ट्री में उनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है।

दिलजीत दोसांज, सरबरी और विदांग रायना स्टारर में वापस आऊंगा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। पार्टीशन बैकड्रॉप पर बनी ये इमोशनल लव स्टोरी अपनी कहानी और म्यूजिक की वजह से लोगों को पसंद आ रही है। तो दोस्तों, एक तरफ धमाल 4 हमें हंसाने के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ अल्फा एक्शन और थ्रिल का धमाका देने वाली है। और शर्वरी के लिए तो ये साल फिलहाल काफी लकड़ी नजर आ रही है। बॉलीवुड की दुनिया से दोस्तों फिलहाल इतना ही। अब वक्त है एक जबरदस्त गाने का। बने रहे हमारे साथ अरुण FM 103.1 MHz पर और सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत बैंग बैंग फिल्म से तू मेरी। इस गीत को अपनी जबरदस्त आवाज दी है विशाल ददलानी ने।

0: दोस्तों बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनलेट मनीचा अनि तारीख हुमबार एरुमा केम वांचो साय का होवांग वांग ना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई जामी खमे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए देश इकोनॉमिक या स्ट्रेटेजिक मोड लिसत लिहान पकमा ती मचु कोई खप चकले ngoko ti mayang karai le india hyan pakma pangwe achona thang le ngotai pulawan le hal kolkata to kem chawan mayo ringke नेवल शिप्स आराम का डाप के पैमान के मिस्टर मोदी ए इंडिया ए डिफेंस सेक्टर मा मी देश तो के लान शक्ले लांगो से लिचु मंटे अंतोले देश अंके आर्म फोर्सेस बू चावनु नो खान पक मा ट्विटर हाट लान अंग अचंगले गो से लिचु मंटे लवन ले प्राइम मिनिस्टर ए मेरी टाइम टीटॉक मा चाहुरानु कोई कप मानले चिंगो थे बा टाटा चू फनमोंग के देश अंग मनचांग चौक लिचुवन ले प्राइम मिनिस्टर मनी हले दुना गिरी संशोष ढाक बोमा एंटी सबमेरिन वारफिया खों का लेदाप ले मिस्टर मोदी ए इंडिया ए अन्य कप ले INS विक्रांत टोखांग ए हले हरन वारसिप बु लान लान रिंग ले अलाई के चिचांग ले माटो अलाई लिचु ओंगपू लिचुवन ले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ए टेलीग्राम मा परीक्षा थोमा नीट UG 2026 री एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर अचोन ले अलाई ले ले सोशल मीडिया तो वीडियो चाय का होले अपुक के का बाचंग पुल होले हले सोशल मीडिया मा NTA ए हाया परीक्षा चाहु रन हु मोचु फनमोंग लवे थमले मैले वे अंगोट ला का दुआले वनले होमे लाइनो नौसंबू मोंगबत आदन ले हले चाइबा का बा अलाई के खत खा खा के का योचांग पुली चुहोले NTA ए हले का बा अलाई के बामा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर हिया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नी पाई असमला ले खत लवे टिकटो लंगो तान तैले लंगाई के बोमा लाइनो नौसम नौसम हुनु पा बोमा यांग यांग खनक नु हाटो ले हले के सा का बामा होजिंग चिचंग चंगके हे ले तिंग से थे बा www.nit.nta.nic.in अंतो ले ऑफिशियल NTA हैंडल्स माले टिकटॉक को हबो मा हनिंग के तो मोंग जाओ ता ओंग ले चुहो ले जे मनिस्टर पे मा खांडू है मनी यंग होनोई मा थामरम ले के यूनिवर्सल कॉम्पेशन कप 2026 का डबले सोशल मीडिया में खांडू ए हजार फुटबॉल टूर्नामेंट लान लान ले चिचंग ले हिस होलीनेस ए चिचन हान पक मा टेम्पांग ले मोक्सा पुई ले के बा मा अटू जा के थाचू चांग पुलो होले हजार फुटबॉल टूर्नामेंट यंग सेंगयम ब्रदर्स योट एसोसिएशन ए 14 दलाई लामा पु फे मा रंग पुली बन अटा नुई के अपन सा ला टू जा के चंग ले रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कॉपोरेशन बोमचू ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग टासिंग ए मन पासिका तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थम हाट पकमा हो फै रिंग के हाटन नुई का दबले हले इस्यांग अंग के पंचायत डिपार्टमेंट ए पासिका टाउन मा अंचल समिति माइतान नुई हाट अंग ला अंग ले अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन ERS RLM चिमाखांग ए टिकटॉक ले डिस्ट्रिक्ट अंग के SSG थम रोंग मा ना मै को ले रिंग के चांगले लेन के हुनी बा नि पासिकाटो डिसीज कॉन्फ्रेंस हॉल मा लेन के रंग बना नि बा मा डेवलपमेंट हिया पब्लिक वेलफेयर सत मोड खा मा खत लिचु रंग मोड मान राय नेचुरल फार्मिंग तो ओबकु मोक दो पोइले के बा मा डिस्ट्रिक्ट लेवल जन कल्याण सेविर लेके टू सो टू जाले हले हा खातो के रंग मोड मान राय मि थम ए रंग मोड मान राय कप से ली टेंपंग ते पोइले के बो मा गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स बु बा मा लेना सिग्नल ला टू जा के चंगके haya tu so makange manrai mi government officials bu boma concern departments bu bama le satika tik le vanve angchu kaple len ke tam mahai thambana ni le ke international yoga day senma le spearhead division e mani mechuka to yar gap chu shongo boma pasikato siang shongka to le yoga tu so tu ja le hale yoga makange khanak changcha boma kanmong le mong sam le ngo ong ke rong ma le atu ja ke sang ke hale atu ja ke makang e Indian army hiya haka to ko ting ko ka khanak nu ba ma chu tu mai le ngong chu ka pai Chicago cricket khama maja Manchester honui to apan ke ICC T20 World Cup group A match ma India to South Africa e wickets arok makang le India e hota punyiban aku runs target ring le tok ke phai apan ke ma South Africa e ball su aga jau atale wicket ali lan lan makang e lat le hota puram ata runs jau ring le

0: India chi mangkhang ai Sri Charani e wickets aram jo la le haja thoma India e toss la la le hawang ave phitai le phan le sa overs ba ma wicket anat amat le hota puni ban achat runs ring tok chang ke FIFA World Cup 2026 ma ani Florida honui to group H match khama Cape Verde heya Uruguay ni Bama Ani Ani Pong Makang e Tata e Chuchila le Panchukle Ani Haya Boma Group G Kama New Zealand hiya Egypt Nokni and Tole Group J Kama Argentina hiya Australia Nokni le Panai Haboma Itanagar Anke Metrological Center e Pabum Pare East Yang Boma Lower Divang Valley Hanpong Male Orange Alert Kahole Haya District Buma Rang Yongta Ni Honui to Tam Tam Chayo Watole Watkola le Chuhole MCI Haya Boma Arunachal Pradesh Anke District Sa Yellow Alert Kama Omle le Chuhole Anika Kaho Ivai Ija Akashwani Itanagar Kaho Pema Tsai Pahai Hovange Ngamhua Johamon Beketing Mapahai
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार. साथ ही बता दूं दोस्तों, अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर. या फिर दोस्तों आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं. और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात. और दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स. दोस्तों कभी कभी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता. काम का प्रेशर, वीक नेटवर्क और प्लान्स हमारे फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक ही जवाब देते हैं, बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है. और इसे सिंपल और रिलेटेबल इमोशन को एक फन रोड ट्रिप एंथम में पिरोया गया है फिल्म बेरिया के गाने बाकी सब ठीक है में. वरुण धवन, अभिषेक बैनर्जी और पालिन काबक की दोस्ती, अरुणाचल प्रदेश के खूबसूरत नजारे और सचिन जिगर का खिंची म्यूजिक इस गाने को लॉन्ग ड्राइव का परफेक्ट कम्बिनियन बना देता है. तो चलिए दोस्तों, मुस्कुराते हुए और लाइफ को थोड़ा हल्का में लेते हुए सुनते हैं बाकी सब ठीक है, बस चल रहा है.

0: हे बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: बस चल रहा है भाई
0: व्हाट अबाउट यू
1: हाँ चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है
0: बाकी सब ठीक है ना
1: हाँ ठीक है
0: और तेरा

0: वैसे भी सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है।
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है।
1: मेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू
1: भाई, लिख के दूं क्या?

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4 बजे आप सुन पाएंगे इदुमिश में श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: अभी आप सुन रहे थे वांछु श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आप श्रोता लीजा प्रस्तुत है इदुमिशी में श्रोताओं का कार्यक्रम।

0: बहुत लगाने इंडिया में आती बनवाया एलोम बो पे औदा अमेगा लाइ बदा अहोगा दुनागिरी संसद अग्रे दोनेम आईएनएस विक्रांत उजी आंदोनवाया रोमे इंडिया आती बुता अमोबा ब्रोगदा ने प्राइम मिनिस्टर में लाओ बदा अहोगा नीट यूजी एग्जाम अखंपोगा नजीमी है महो आमाजी ताहुला आजोप्रा टेलीग्राम मने अमोया कुगा नखदा लाने सोशल आहो मीडिया मा लाइ हुआ चाहे मांजी गुमदा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए मच में लाशिगा ने एग्जाम है इजी तो हामी प्रा अखंडोगा लादा ला होगा आजोहितया लाहायो गबने अली लाखी पिया है ना प्रा अनहितो सदा ने एनटीए मच में लगाने आलम्रो दो ने आलम्रो चिन नन्ना बालम्रो में अली लाउ शाह ममा रियाशितोम ने काजी अंजिति ची एनटीए ची वेबसाइट www.nit.nta.nic माने अथु सुजी ना लगादा अहोगा तवांग डिस्ट्रिक्ट मचे जांग अतगोने ग्वासो लिना बा यूनिवर्सल कंपेशन कोप एजर गया अनहोल तारो अखपगम बा ची मिस्टर पेमा खंडु में बुनी आय भया बदा अहोगा आ फुटबॉल टूर्नामेंट है बुहुलु पीली ना बा तले लामा आला खिन्हु खेगनु बा इनुमा लाता चिगने जांग सेंगजाम ब्रदर्स यूथ एसोसिएशन में अखनेगा दा अहोगा इस्यांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट मा सेल्फ हेल्प ग्रुप आनंदो के बनाएं लिवलीहुड मार्केट और मैं आज तेगा बचे रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज दो ने कॉरपोरेशन ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ओजिंग तासिंग में बोली अफवाह बता आहोगा इस्यांग पंचायती राज डिपार्टमेंट में अंचल समिति तांबे अमय अमु ओ अजय पतेना गने अरे ओ मैं आज तेगा मा अरुणाचल एसआरएलएम में भी आरोगा चिदा आहोगा केमिकल तामा एठोम ने पाकू एगा मने अंबा दोने अतिकाची इमुगे बने काजी प्रावे लाजो चा बुनी निगा इस्यांग डिस्ट्रिक्ट मने जन कल्याण शिविर गे पासीघाट माचे डीसी ऑफिस मने अखाने गला दा ला होगा आ प्रोग्राम मने अरुंदा डिपार्टमेंट मामाचे आजालम्रो दोने अपितिया अनुरूप में चिचाए बदा ला होगा बुनी बुहुलुनी लीना बा इंटरनेशनल योगा डे इनी अखगा महो शी योमी डिस्ट्रिक्ट मिचुका तिकोची यारग्या माचाफा दोनेम इश्यांग डिस्ट्रिक्ट पासीघाट एथो माचाफा नेम योगा प्रोग्राम अखनगा लदा ला होगा याको नंबर ची आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप मा साउथ अफ्रीका माचे याकू टीम में इंडिया माचे याकू टीम है ताहू विकेट माने अनेगा बदा आहोगा इंडिया में अन्य ओवर मा यू विकेट एबो बयाग ने माउ मगारू यू रन उतेरा बमा साउथ अफ्रीका में जिगा ने हुलुखिनी ओवर दोने बॉल खेगे मा कापी विकेट एबो बयाग ने माउ ताहू खेगे रन उतेरा बचिदा आहोगा फीफा वर्ल्ड कप मा फ्लोरिडा अंतिको ने अखगा ग्रुप मैच के मा के बारे ने यूरोगोए एबगाची मैच है गोलकांता मांडोबा महोम इजिप्ट में न्यूजीलैंड है कासोखे गोल मने अनेगा बदा अहोगा बेल्जियम ने ईरान एबगाची मैच माब ऐसे टीम में गोल हामी मैच रोगा तमा दोबदा अहोगा महो अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया एबगाचे मैच है अबू नियामा हूँ बजन नासुर मिलीमा हो ने खगदा आहोगा अरुणाचल प्रदेश मा अबू नया पपुम परे इस्यांग दोने लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ब्रम्बो इकिशा अन्य डिस्ट्रिक्ट मा नपरा आयो सदा ने ईटानगर मीटोरोलॉजिकल सेंटर मच ने ला होगा ने आ डिस्ट्रिक्ट मच अतिका ब्रा मा अबू नया अबली चेदो ने बैब ओ सदा ला होगा एतंसी इद मिसमी आहो अलिमाओ दवाए एचा आकाशवाणी ईटानगर दिब्रुगढ़ नाली इद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतन हेंदो ओतो के म्यूलेची आशे ची अहोजी
1: दोस्तों अभी आपने सुना इदुमिश्मी श्रोताओं का समाचार। अगर आप इदुमिश्मी श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप

ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स तथा DRM 666 किलो हर्ट्स पर। और दोस्तों इस वक्त आप हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा हर्ट्स पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

दोस्तों आइए बेहतरीन हिंदी फिल्म में सॉन्ग्स का सिलसिला यू ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे वीर फिल्म का सलाम आया, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और रूप कुमार राठौड़ ने।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही दोस्तों हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक दीदांगजंग तथा तकनीकी अभियंता तिम। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी RJ अपर्णा। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तामसा समाचार। अगर आप हमारे तामसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हम सत्य को हजार अलग अलग तरीकों और शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, फिर भी हर तरीका सत्य होगा, क्योंकि सत्य तो एक ही है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस खुशनुमा शाम को आप सभी के लिए और खास और बेहद खुशनुमा बनाने के लिए मौजूद रहेंगे, आपके राह के हमराही बनने को मौजूद रहेंगे संचरण निष्पादक पंचानन दोले, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ। मैं यानी कि आप सभी की दोस्त, आप सभी के होस्ट, यानी कि आप सभी के अपने आरजे अपना मौजूद रहेगी आप सभी के खिदमत में। करने आए हैं हम एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस शुरू करेंगे हम अब से कुछ ही देर में गुड इवनिंग ईटानगर का सेगमेंट। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Good evening, Itanagar.

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर के सेगमेंट में। ये वो कंपोजिट प्रोग्राम है जहां ना हम आपकी केवल मनोरंजन करवाते हैं फ्रेंड्स, बल्कि हम बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन साझा करते हैं और कभी कभार कुछ मॉरल, जिंदगी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज आप सभी को सुनवाते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि आज हमारे इतिहास में क्या खास है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज बहुत ही एक खास दिन है। 22 जून है 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक गुट का गठन किया। बाद में इसे एक पूर्ण राजनीतिक दल बना लिया गया। और आपको बता दूं कि कांग्रेस के बाद भारत का यह फर्स्ट जो है राजनीतिक एक और जो है इसे बोल सकते हैं, जैसे एक ग्रुप और है जो कि ये फर्स्ट फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो फर्स्ट है एक कांग्रेस के नेक्स्ट जो है ये राजनीतिक एक पार्टी बनी भारत में। 1941 में ऑपरेशन बरबोसा के तहत एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व वाली नाजी जर्मनी की सेना सोवियत

संघ पर विशाल आक्रमण उसने शुरू किया था आज ही के दिन, यानी कि 22 जून 1941 को। 1976 कनाडा की संसद में मॉन्ट्रियल में मौत की सजा फांसी को आज ही के दिन समाप्त कर दिया गया था। 2004 भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस एंड महेश भूपति की जोड़ी ने एटीपी नॉटिंघम ओपन युगल का जो है ओपन कंपटीशन का युगल खिताब जीते थे। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम प्रसिद्ध हस्तियों की जयंती और पुण्यतिथि के बारे में बात करें तो सरिता जोशी भारतीय टेलीविजन और रंगमंच की दिग्गज अभिनेत्री का जन्म 22 जून 1941 को हुआ था। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनेता का जन्म 22 जून 1950 को हुआ था। पीसी शर्कर जूनियर द ग्रेट मैजिशियन भारत के प्रसिद्ध जादूगर का जन्म 22 जून 1946 को आज ही के दिन यानी कि 22 जून को हुआ था। तो हो गई कुछ खास बातें इतिहास के पन्नों से, कुछ रोचक बातें आप सभी के लिए। तो बस अब रेडी है आप सभी के लिए कुछ बहुत प्यारे प्यारे गीत। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस बेहद रोमांटिक गीत के साथ ही हमारे आज की गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है अब यही पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना, विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में यूनिवर्सल कंपेशन कप 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भरोसे, विकास और जन कल्याण के 12 साल थीम के तहत जिला स्तरीय जन कल्याण शिविर आयोजित। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों के लिए ऑरेंज और अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से पराजित किया। और फीफा विश्व कप में आज ग्रुप जेड में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच 10:30 बजे शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के लिए 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया है कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल है। अग्निवीरों के लिए आवश्यक अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया जाएगा। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और NVM कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय अनुशासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ।
1: अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले के जांग में यूनिवर्सल कंपेशन कप 2026 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं बल्कि उन महत्वपूर्ण मूल्यों का जश्न है जिन्हें बढ़ावा देने के लिए परम पावन दलाई लामा ने अपना जीवन समर्पित किया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट जांग शमजांग ब्रदर्स यूथ एसोसिएशन द्वारा परम पावन 14वें दलाई लामा के 51वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट जिला उपायुक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में भरोसे, विकास और जन कल्याण के 12 साल थीम के तहत जिला स्तरीय जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्राकृतिक खेती पर खास जोर दिया गया, जिसका मकसद किसानों और आम लोगों को प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मिट्टी की सेहत का प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, रोजगार के अवसर और जनता के लाभ के लिए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के फायदों के बारे में जागरूक करना था। यह कार्यक्रम किसानों, सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों के बीच बातचीत का एक मंच बना, जिसमें टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देने और सरकारी सेवाओं तक पहुंच बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक जारी है। दो दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों की सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। बैठक का मुख्य विजन वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से
1: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया की विदेश मंत्री बुतमुंग बत्सेसेक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। इस यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री सो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कराईकल में भी 2 दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहने की उम्मीद है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों तवांग और शियोमी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट, साथ ही पापुमपारे, ईस्ट सियांग और लोअर दिबांग वैली के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चिता मित्रों पर सहरिया जनजातीय के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि इनकी महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार।
1: महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया। मैनचेस्टर में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते हुए 4 विकेट पर 161 रन बनाए थे। फीफा विश्व कप 2026 में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा। मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इससे पहले फ्लोरिडा में आज ग्रुप एच में केप वर्डे और उरुग्वे के बीच मैच 2-2 की बराबरी पर रहा। ग्रुप जी में मुकाबले कल रात कैलिफोर्निया में ईरान और बेल्जियम के बीच खेला गया और मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। इससे पहले अटलांटा में ग्रुप एच के मुकाबले में स्पेन ने सऊदी अरब पर 4-0 की शानदार दर्ज जीत करके अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने की और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट दर्ज की गई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू कर दिया है। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सके। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांति काल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. In a measured employment and welfare push, the BJP-led West Bengal government today presented its first full budget 2026 and 2027, focusing on social welfare, infrastructure, development and employment, and also announced a slew of women-centric schemes. Presented today by Finance Minister Swapan Dasgupta, he has announced the recruitment of 1 lakh vacant posts across various state departments. 33% of these new positions will be reserved for women. The BRICS National Security Advisors meeting is underway in New Delhi. The two-day meeting being carried by National Security Advisor Ajit Doval brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and UAE. The gathering takes place as India holds the BRICS chairship for the fourth time in 2026, having previously led the grouping in 2012, 2020, 2016 and 2020-21.

0: India's chairmanship operates under the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, reflecting Prime Minister Narendra Modi's people-centric vision articulated at the 2025 Rio Summit. President Draupadi Murmu today interacted with cheetah mitras and members of the Saharia tribe at Kuno National Park in Madhya Pradesh's Shiopur district. She appreciated their contribution to Project Cheetah and said the active participation of local communities is playing an important role in the success of the ambitious conservation program. The Parliamentary Standing Committee on External Affairs, chaired by Member of Parliament Shashi Tharoor, has begun a four-day study visit to Jammu and Kashmir and Ladakh to review strategic border security and foreign policy issues. The panel is examining recent developments in India's bilateral relations, the suspension of the Indus Waters Treaty and threats posed by cross-border terrorism along the line of control and the international border. It is also focusing on India-China relations and the situation along the line of actual control in eastern Ladakh. BJP National President Nitin Naveen met renowned agricultural scientist and Padma Bhushan awardee Sardara Singh Jol in Ludhiana today and held discussions on Punjab's agrarian crisis. Following the meeting, Mr. Naveen said it was a privilege to interact with a personality who has made immense contributions to the field of agriculture. He said he gained valuable insights on agricultural issues during his interaction with Sri Jol and expressed confidence that his views and suggestions would prove beneficial for the nation. In Uttar Pradesh, notorious criminal Lalan Singh, carrying a combined bounty of 1,25,000 rupees, was killed in an encounter with the Uttar Pradesh Special Task Force in Saharanpur last night. Police said the shootout took place on the Sarsawa Nakur Road. A resident of Samastipur district in Bihar, Lalan Singh was wanted in several serious criminal cases, including the shooting of a sub-inspector and robbery of his service pistol in Varanasi and a firing gun robbery case in Chandauli district. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrived in Mongolia on a two-day visit to further advance the special partnership between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar shared this information and said that he is looking forward to fruitful engagements. During the visit, the External Affairs Minister will meet the Mongolian leadership and hold discussions with his counterpart, Foreign Minister B. Betseg. On the second leg of his visit, the External Affairs Minister will visit South Korea on Wednesday and Thursday. During the visit, the minister will hold discussions with Foreign Minister Cho Hyun. He will also deliver the keynote speech at the Jeju Forum for Peace and Prosperity in Jeju on Thursday. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजा प्रस्तुत है नोक्ति श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अंगांगा ना रंजा ठासन आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ व रंजा बनबंगा बाजी से पटान रेलियन नानुक टेको बच्चों तारन ठजा जुनजाम रोकने वन्नी तारिक हुम बच्चा खो बच्चों को यहन जाफुन तांजामा अरे खबर है जो तरमान Prime Minister Narendra Modi madhya ke economic le strategic influence rang arong mo maritime capability bajo lame ka ngale India hi are karang jo kho khame ki ngama chotho ko bajo adi ko Modi ma Kolkata nang India ma huan ba vanrap naval ship commissioning huan ko ta poit ko defense ne nang India hi riak telo lo diak madang rang le diak ajanang diak hi armed forces bojar rang jin rang ma jo ngama chotho ko bajo अरे को मोदी मा मेरिटाइम पावर आहूठा मा हनहन जो दिया खे अदों पावर तादंग मा जोंगा मा चोटो को बाजो अरे को मेरिटाइम कैपेबिलिटीज विंग टी ही अरोंग ले अजा इकोनॉमिक ले स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जोंगा मा मिंचु जेठु को बाजो अरिगा प्राइम मिनिस्टर मीजामा हुआनवा सेल्ट फ्रिगेट डूनागिरी सर्वे वेसल संशोधक एंटी सबमरीन वारफेयर शलो वाटरक्राफ्ट अग्रही मजा लुसिको वाजा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हेमा एनईईटी यूजी 2026 री एग्जामिनेशन सोकमा को टेलीग्राम ना वीडियो नेमा क्वेश्चन पेपर लीक दंगे कांगा मा होंगे कापा मोटो हंगले दंगमा चौंगा मा चुटो को बाजा अधिका सोशल मीडिया पोस्ट नेमा एनटीए हेमा कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी ले सर्विलेंस खनगो एग्जाम पा सक्सेसफुली सॉफ्टवेयर जोंगा मा मिन चुटो को बाजा अधिको एनटीए हेमा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ले लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से दमनंग अरे मडंगली कंटेंट होंसित ते ही खोना एक्शन का प्रांग जो मौका है का गाले एनटीए है मा न्यावेटे न्योंग वाले पब्लिक है ना खबर है एनटीए है ऑफिशियल वेबसाइट www.neet.nta.nic.in को वा वेरीफाई हो रंग रसवाजा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मा जांग नंग लॉरम यूनिवर्सल कंपेशन कप 2026 पर लुसित को वाजा अरिगो खांडू मंगिन चोटो कटाको फुटबॉल टूर्नामेंट नो मा अजापा हिस हॉलीनेस मा अते रुंडोंग पर प्रोमोटिंग एनं चोकुटा होमवे पर मोना रंजो गा मा चोटो को वाजा अरिगो फुटबॉल टूर्नामेंट पर जंग सजम ब्रदर्स यूथ एसोसिएशन है मा हिस हॉलीनेस डी 14th दलाई लामा रोग घुपा थे रंग पा छा रंगो पर मोना रंजो लोम चुके का मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज कॉर्पोरेशन एंड ट्रांसपोर्ट ओजिंग तासिंग में मजा पासी घटना सेल्फ हेल्प ग्रुप से रंग लिवलीहुड मार्केट शेड पर लांको बाजा एडिकोर फैसिलिटी पर पंचायत डिपार्टमेंट इस यंग है मा पासी का टाउन को वा अंचल समिति मीट मार्केट पर रेनोवेशन एंड रीपर्पोसिंग है मा होन बाजा एडिकोर इनिशिएटिव पर अरुणाचल स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन ARSRLM है कन्वर्जेंस के मजा लूसे देगा स्पीयरहेड डिवीजन है मजा पासी घटवा सियांग लेमे चुका वा या गैपचू चुकों को होलिस्टिक वेलनेस एंड हार्मनी विद नेचर थीम दमनांग शिवनी लो इंटरनेशनल योगा रंगो पमानी वाजा अधिकोर सेलिब्रेशन पमा इंडियन आर्मी ले लोकल हासोंग है टुंगनांग हुंग छेतमिंग पा अजाजा रोंग सिर ले हेल्दी रंडोंग सोशल हांती ले अरोमा संडंग रंग अचान रोंग बजाओ खे सकोई का गामा चुटो को बाजा आईसीसी T20 दिया के वर्ल्ड कप मजा मैनचेस्टर ना लुमता को ग्रुप ए खेन को साउथ अफ्रीका मा इंडिया ही वन रॉक विकेट में जीन वाजा अरे को इंडिया मा चार है रॉक बंगा बने खुरान वाटला मा साउथ अफ्रीका मा जून वाटा को अठुन रंग बोल बंगा तोंग टू को चार है रॉक रॉक वंटे रान वाटला मा जीन वाजा अरे को तस्मीन ब्रिट्स मा रॉक बिली रान वाट वाजा गाले इंडिया ती श्री चारानी मा वन रंग विकेट कप वाजा अरे को खमा को इंडिया मा टॉस पर जीन लामा बंग वाट रंग रन वाजा गा मजा चोटो को एका फीफा वर्ल्ड कप 2026 को फ्लोरिडा नंग थजा केप वर्डे मा उर्गे दमना 2-2 गोल मा ड्रॉ होन बाजा अधिक थजा खेन को ग्रुप जी को रंखा वने रखा थे बाजी को न्यूजीलैंड ते इजिप्ट दमना एलो मा जा अधिक ग्रुप जे खेन को अर्जेंटीना ही ऑस्ट्रिया दमना रंजा वने चिखा थे बाजी को एलो मा जा गा मा जा चुटो को एगा मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर हे मा पपुम परे इस सियांग ला लोबा डिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट हे रंग ऑरेंज अलर्ट पर लुसिट को बाजा अधिकोरे डिस्ट्रिक्ट हे नंग पोंग डोंग पाट डोंग डम नंग रंग मुख रंग फा ए रंग आजा नाले एमसीआई हे मा अरुणाचल प्रदेश व रोकने डिस्ट्रिक्ट से रंग येलो अलर्ट पर मिंग लुसिट को बाजा गा मजा चुठो को एगा तजा नानो देखो बट तक जो अला थोन मांगता
3: अरे खबर से ऐसे प्रोग्राम को गांव में हो सहेले लम्बी छावा रंजन से चुतात मगन

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते समाचार। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी फ्रेंड्स मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, और अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम के साथ। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम में। दोस्तों ये वो सेगमेंट होता है जहां हम बातें करते हैं कुछ खास, यानी कि या तो आपको हम कुछ स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ गपशप करते हैं, है ना दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी। टाइटल जो है उसकी है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बात है एक वक्त का, यानी कि एक समय का। एक गांव में महामारी फैली हुई थी। वहां के लोग धंधे पानी की तलाश में दूसरे गांवों में जाने लगे और एक गांव का व्यापारी जो है दोस्तों पास के दूसरे गांव में गया और वहां का मुखिया से बोला। अब वो क्या बोला, एक सस्पेंस है आप सभी के लिए। तो चलिए, लेकिन उससे पहले मैं बता तो दूंगी कि उसने क्या बोला, लेकिन इससे पहले हो जाए एक प्यार भरा गीत केवल आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगी आप सभी को कि उसने क्या बोला उस मुखिया से। उसने कहा कि महाराज, मैं यहाँ कुछ करना चाहता हूँ, वहां महामारी फैली हुई है, यहाँ धंधा करना चाहता हूँ, कुछ कमाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मुखिया ने पूछा, जहां से आए हो भाई, वहां के लोग कैसे थे? व्यापारी बोला, पूछो मत साहब, पूछो मत, राम राम राम राम राम, बड़े बेकार के लोग थे वहां के, बड़े झगड़ालू, बात बात में लड़ने लगते थे, और बात बात में लड़ना झगड़ना गाली देना इनकी आदत थी, बहुत ही बेकार के लोग थे। तो इस पर मुखिया बोला, तो वहां के लोग तो ऐसे थे, तो यहाँ के लोग तो उससे भी ज्यादा बेकार है। वहां तो लोग झगड़ा ही करते थे, यहाँ तो सीधे मारपीट पर उतर आते हैं, बात बाद में करते हैं, पहले लात और थप्पड़ मारते हैं। तो व्यापारी इस गांव से और आगे चला गया, क्योंकि ये डर गया कि अब मैं वहां ऐसे थी, यहां तो उससे भी बर्बाद हालत है, मैं यहां क्या करूंगा। तो थोड़ी देर उसे एक और गांव मिला, वहां जाकर वो क्या कांड करता है, चलिए देखते हैं एक और गीत के बाद। वैसे दोस्तों, मैं जो सॉन्ग्स सुना रही हूं आप सभी को, इससे इस स्टोरी से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये मेरी एक दिल की बात है आप सभी तक पहुंचाने के लिए। तो एक और बहुत ही प्यार भरा गीत मैंने आप सभी के लिए चुन के मैंने रखा है, तो आप सब एंजॉय कीजिए। जी हाँ।

दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं इवनिंग ड्राइव के प्रोग्राम के साथ और इसे आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है फ्रेंड्स एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी को कहानी सुना रही थी कि वो इंसान जो है, व्यापारी जो है, वहां से आगे मुखिया की बातों को सुनकर आगे चला जाता है अपना काम ढूंढते हुए। यहां होता क्या है कि एक और व्यापारी काम ढूंढने के लिए उस मुखिया के पास आ जाता है, उसी वक्त दूसरा व्यापारी जो है फिर वो भी वही बात पूछता है कि अच्छा मैं यहां कुछ व्यापार करना चाहता हूं, तो यहाँ के लोग कैसे हैं? तो मुखिया फिर से वही रिप्लाई उसे देता है कि अच्छा आप पहले ये बताओ कि आप जहां पहले थे वहां के लोग कैसे थे। तो इस पर उस इंसान जो दूसरा व्यापारी है वो कहता है वहां के लोग तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही मिलनसार थे, बहुत प्यार करते थे, मगर वहां हैजा फैल गया है, इसीलिए मैं जो है नौकरी की तलाश में, काम छोड़कर जो है वहां का काम की तलाश में मैं आ रहा हूं, और वहां के लोग वाकई में बहुत ही अच्छे थे। तो इस पर जो है जो मुखिया है वो कहता है फिर ठीक है, तुम यहां जो है काम कर सकते हो, यहां रह के काम कर सकते हो। तो यही चीज जो है मुखिया का जो चेला है वो दूर पर खड़े रह के सब देख रहा था, तो उसने कहा मुखिया से कि क्या बात है मुखिया जी, आपने दो लोगों को दो अलग अलग बातें बताई, ऐसा क्यों? क्योंकि पहले को तो आपने नकार दिया, आपने उसे कहा कि यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा, उसके गांव से भी ज्यादा बदतर और बदतमीज है, और इस पर वो चला गया, और इससे आप कह रहे हो कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और आप जो है यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। इस पर मुखिया जी क्या कहते हैं मैं अगले गीत के बाद आप सभी को सुनाती हूँ। सबसे पहले इस गीत को एंजॉय कीजिए।

0: मम्मी डैडी घर पर नहीं है? ग्रेट, मैं आ जाऊँ। तुम्हारी फ्रेंड अकेली घर जा रही है, बेचारी, मैं छोड़ाऊँ?
1: एक हाँ कहने को कितना टहलाती है, थक जाते हैं हम वो जी बहलाती है।
2: वैसे दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि इस टॉपिक के साथ ये सॉन्ग्स बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ये तो मैं अपनी एक दिल की बात आप सभी से साझा कर रही हूं। तो जब मुखिया से उसके चेले ने पूछा कि आपने दोनों को दो जैसा बात क्यों कहा, एक को कहा कि नहीं ये गांव ठीक नहीं है और दूसरे को कहते हो कि यहाँ पे तुम व्यापार कर लो, बिजनेस कर लो, ऐसा क्यों है? तो मुखिया जी ने कहा, सुन चेले, जो जैसा खुद होता है ना, वो अपने जैसी दुनिया वहां बना लेता है। अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, उसे उसके माफिक ही लोग मिल जाते हैं। चोर को सारे चोर और शराबी को सारे शराबी नजर आते हैं। और अगर आप में प्रेम का भाव है तो आपको प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे, सत्संगी को सत्संगी मिल जाते हैं, शक्कर वाले को शक्कर वाले मिल जाते हैं और टक्कर वाले को टक्कर देने वाले मिल जाते हैं। तो जैसा जो होता है उसे वैसा मिल जाते हैं। गहरी बात तो ये है, ये संसार ऐसी एक घाटी है जहां जैसी आवाज दोगे वैसे ही प्रतिध्वनि सुनाई हमें देगी, जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसे ही आपको सृष्टि मिलेगी। यानी कि आप जैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे, जैसा करोगे, आपको वैसे ही लोग आपके सामने में मिलेंगे। बहरहाल दोस्तों, चलते चलते वक्त हो चला है इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम को संपन्न करने के। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं लेकर शाम की महफिल। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
3: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
4: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
5: The Office of the District Magistrate, Capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell.

वाकई में दोस्तों, आपके दिल से हमारा दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। बहरहाल अब आप आनंद उठा पाएंगे शाम की महफिल के साथ। वैसे आज तो हो गया है मंडे, वीकेंड खत्म, संडे खत्म। वाकई में अब तो सभी लोग ड्यूटी से अपने अपने घर लौट रहे होंगे या फिर घर तक आप पहुंच भी चुके होंगे। ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं, 100% सुन ही रहे होंगे, इतना हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। और आपकी शाम को बिल्कुल बॉलीवुड ट्रैक से परफेक्ट एम्बियंस देने की हम कोशिश 100% करते हैं। इस वक्त शाम का वक्त है, हो सकता है आपके शहर में या तो बूंदाबांदी हो रही है या भीषण गर्मी पड़ रही हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ मौसम बड़ा ही सुहावना है, रिमझिम बरसात हो रही है। तो अगर आपके शहर में गर्मी है तो अरुण एफएम अपने सॉन्ग्स के जरिए आपको ठंडक पहुंचाने में बेहद बेशक बे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, काम करेगी, बिल्कुल तगड़े से काम करेगी और बहुत दिल से काम करेगी कि आपको हम जो है फुल एंटरटेन कर सके शाम की महफिल में। एक कप प्यार भरी चाय या कॉफी के इश्क भरी चुस्कियां लेते हुए अपने किसी खास के साथ हमें सुनिएगा जरूर। तो दोस्तों, अब हम जो है आपके लिए पेश करेंगे बेहद चुनिंदा गीत। दोस्तों, प्यार जो है एक ऐसा एहसास है जो इंसान को हर खुशी हर गम से बेगाना कर देता है। जब दिल किसी के लिए धड़कने लगता है तो दुनिया की सारी बंदिशें छोटी लगने लगती है ना दोस्तों। इस खूबसूरत सी एहसास को शब्दों और सुरों में पिरो के एक सदाबहार नगमे को लेकर हम जो है आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यार भरा गीत, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, कि तेरी हर अदा मोहब्बत सी लगती है, एक पल की जुदाई मुद्दत सी लगती है, पहले नहीं सोचा था अब सोचने लगे हैं, कि पहले नहीं सोचा था अब सोचने लगे हैं हम जिंदगी के हर लम्हों में, तेरी जरूरत सी अब लगने लगी है, तेरा साथ ना छूटे बस दुआ है मेरी, तेरा साथ ना छूटे बस दुआ है मेरी, तेरा ख्याल ना छूटे बस दुआ है मेरी, रूठे चाहे रब मेरा मुझसे, मेरा प्यार ना रूठे बस दुआ है मेरी। दोस्तों, प्यार की गहराइयों को शब्दों में बयां करना आसान बिल्कुल नहीं होता, है ना। जब किसी का प्यार हमारी पूरी दुनिया बन जाए, तब दिल की आवाज कुछ यूं निकलती है। लीजिए, पेश खिदमत है इस प्यार भरा गीत।

दोस्तों, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब जाना है। जी हाँ दोस्तों, अब जो हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, इस गीत में उम्मीद है, यादों का सफर है, प्यार है दोस्तों, और बहुत ही प्यारा सा गीत है, और मैं 100% दावे के साथ बोल सकती हूँ आप सभी को बेहद पसंद आने वाले हैं। एंजॉय कीजिए।

वाकई में दोस्तों कितनी सच्ची बात है कि आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। ये आपका शो है, आपका पसंदीदा सॉन्ग्स साथ होगा। वैसे हम सबसे पहले बोल देते हैं आपको शुभ संध्या। जी हाँ, और दो लफ्ज आपके लिए कि शाम तू ही बता तू इतनी खामोश क्यों है, क्या तुझे भी किसी की याद सताती है, तेरी उपमा सब आशिक देते हैं अपनी महबूब की तारीफ में, कि ढलती शाम से खूबसूरत हो तुम, कभी तू भी अपने दिल का हाल बता, शाम तू ही बता तू इतनी खामोश क्यों है। तो खामोशी को हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं धुआंधार गीतों के साथ। आप सब झूम जाइए, एंजॉय कीजिए इन खूबसूरत गीतों के साथ। जी हाँ दोस्तों,

0: तो तुम नहीं आ रहे हो।
1: कहाँ?
0: भूल गए ना कजरा नाइट में?
1: ओह गॉड, तुम्हें पता है ना कि मैं कितना बिजी हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा।
0: मैं कुछ नहीं जानती, मैंने इसीलिए तुम्हें पहले से बताया था ताकि तुम इस बार कोई बहाने ना करो।
1: बहाना कहा, यू नो द मीटिंग इज सो इंपॉर्टेंट।
0: तुम आ रहे हो, यस और नो?
1: नो आई कांट।
0: व्हाटएवर।

दोस्तों, इस धुएंदार गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का यह सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बस अब से बस कुछ ही देर में आप सब सुन सकेंगे आदि समाचार। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक, है ना दोस्तों। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे आज के कलाकार के सेगमेंट के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: बात पहुंची मिलते मिलते सनम, ओ
4: गीत संगीत
5: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
5: दिल से दिल की बात,
4: बस आपके नाम
5: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के कलाकार सेगमेंट में। दोस्तों, ये वो सेगमेंट होता है जहां हम एक ही अदाकार, फनकार, गीतकार, संगीतकार या फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोगों के बारे में बातें करते हैं और उनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के सॉन्ग्स आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज जो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं वो वाकई में किसी परिचय की मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे कहा जाए तो दौर बीत गया हो भले ही, लेकिन वो जो दौर था वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच जिंदा तो जरूर है। यस दोस्तों, मैं बात कर रही हूं एक ऐसी अदाकारा की जो अपने वक्त की मशहूर अभिनेत्री

से थी एंड शी इज नन अदर देन मीना कुमारी द ट्रेजेडी क्वीन ऑफ बॉलीवुड. इनका जन्म 1 अगस्त 1932 को दादर यानी कि मुंबई में, जो कि पहले बॉम्बे था अभी का मुंबई में हुआ था. ये अपने आप में एक ऐसी कलाकार थी जो ना केवल अभिनेत्री थी बल्कि बेहतरीन शायरी करने वाली शायराना थी, मशहूर नृत्यांगना थी और एक गायक कलाकार भी थी. इनके बारे में आज हम बातें करेंगे. इनका वास्तविक नाम था महज़बी बानो. जी हाँ दोस्तों, और जो है इन्होंने बहुत ही अपनी छोटी उम्र से, कहा जाए तो बहुत छोटी उम्र से इन्होंने बेबी महज़बी के रूप में लेदर फेस में 1939 में नजर आई थी, जो कि विजय भट्ट के निर्देशन में बनी थी ये फिल्म. जी हाँ, और इसके बाद इनकी कैरियर की शुरुआत ही हो गई 1952 में बेजू पावरा के साथ. तो दोस्तों बातें करेंगे मीना कुमारी के बारे में, लेकिन मैं बातें करने से पहले इनके कुछ सुपर डुपर हिट फिल्मों के नाम इसलिए बता देना चाहती हूं क्योंकि जब हम इनके बारे में बात करेंगे तो बातें ही करते रहेंगे, फिर आपको सॉन्ग्स सुनारी जो है बहुत वक्त कम पड़ जाती है. इसलिए मैं कुछ मशहूर फिल्मों के बारे में बता दूं कि इन्होंने सुपर डुपर हिट फिल्म्स दी है इल्जाम, नौलखा हार, चांदनी चौक, जिंदगी और ख्वाब, सनम, प्यार का सागर, चार दिल चार राहे, हलाकू, गोमती के किनारे, शरारत, भाभी की चुड़िया, पूर्णिमा, गजल, काजल, अकेले मत जाइयो, दुश्मन, मिस मैरी, शारदा, चिराग कहां, रोशनी कहां, दिल एक मंदिर, मजली दीदी, बहारों की मंजिल, साहेब बीबी और गुलाम. काजल तो मैंने बता ही दिया, दिल अपना और प्रीत पराई और पाकिजा और ढेर सारी फिल्में हैं इनके. इनके बारे में हम बातें करेंगे, इनके निजी जो जिंदगी है, जीवन है, उनके बारे में बातें करेंगे. लेकिन हो जाए सबसे पहले एक प्यार भरा नगमा केवल आप सभी के लिए. एंजॉय कीजिए.

दोस्तों कहा जाता है कि जब मीना कुमारी बिल्कुल अपने फिल्म के दुनिया के पीक पर थी, यानी कि बहुत उन्होंने अपने फिल्मों के जरिए नाम शोहरत उन्होंने कमा ली थी, उस समय में उनके जीवन में एक कमाल ही हो गया। 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात जो है जाने माने फिल्म की जो है निदेशक कमाल अमरोही से हो जाती है, और उनके बार बार मिलने के बाद इनमें प्यार का खुमार चढ़ता है और दोनों जो है इतने गहरे प्यार में पड़ जाते हैं कि मीना कुमारी ने बिना सोचे समझे कमाल अमरोही से शादी कर ली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है मीना कुमारी के लाइफ में ट्विस्ट तो तब आता है जब 6 साल बीतने के बाद अचानक उसे पता चलता है कि कमाल अमरोही जो है पहले से ही शादीशुदा ही नहीं बल्कि बच्चों के पिता भी थे। इस सदमे को मीना कुमारी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाई, सहन नहीं पाई और सदमे में आ गई, और सदमे में आने का नतीजा ये हुआ कि मीना कुमारी खुद को नशे में रखने लगी, मदिरा का पान शराब के नशे में डूबते ही रह गई, और इस तरह से जो है एक बहुत ही दुखदाई जो है सफर जिंदगी का उनके लाइफ का शुरू हो गया। माना तो ये भी जाता है कि कमाल अमरोही जब भी उनके पास आते उन्हें बहुत ही टॉर्चर करते, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हो गई थी, बहुत टॉर्चर पे रहती थी मीना कुमारी। जी हाँ, और इस तरह से जो है इन्हें जो है ट्रेजेडी क्वीन का खिताब भी मिला। बात करते हैं और भी उनके निजी जीवन के बारे में, लेकिन हो जाए एक और प्यार भरा गीत इनके ही फिल्म से, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस टेंशन के चलते हुए मीना कुमारी जो है गुमनाम की जिंदगी जीती रही, लेकिन कहा जाता है कि इनकी जोड़ी जो है प्रदीप कुमार के साथ, भरत भूषण के साथ, धर्मेंद्र के साथ भी काफी जमी। और जो है इन्होंने, मैंने कहा ही है आप लोगों को कि काफी फिल्में इन्होंने की, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रही। और जो है इनका ये जो सदमा कमाल अमरोही के साथ जो वाकया उनके साथ हुआ निजी जिंदगी में, और साथ में जो वो टॉर्चर बॉर्डर कर रही थी, इसी के चलते हुए मीना कुमारी अपने आप को बिल्कुल स्टेबल नहीं रख पाई। इसी बीच आया बिल्कुल पाकीजा। जी हाँ, 1972 में कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा में इन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि ये फिल्म इनकी जिंदगी की नींव बन गई, और जो है ये इनकी आखिरी फिल्म भी रही। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि इसके बाद इनका जो है इनको लीवर सिरोसिस हो गया था, और महज 39 इयर्स की उम्र में ही वो इस दुनिया को लीवर सिरोसिस के चलते उनका निधन हो गया। और इनकी जो है आखिरी फिल्म थी पाकीजा। लेकिन इससे पहले पाकीजा की सॉन्ग सुनाने से पहले मैं एक और गीत जो है मैं आप सभी के लिए प्ले कर दूं, और उसके बाद पाकीजा के सॉन्ग हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।

0: दोस्तों मीना कुमारी के बारे में कहा जाता है कि मीना कुमारी अक्सर बहुत सारे पैसे धन दौलत दूसरों के ऊपर में लुटाया करती थी। ऐसे में एक दिन इनके जो को एक्ट्रेस और उनके करीबी फ्रेंड नादिरा है, उन्होंने कहा था कि महजबी तुम क्यों इतना पैसा दूसरों के ऊपर लुटाती हो। तो उन्होंने बड़े सहज रूप से कहा था कि जिसकी जिंदगी लुट गई हो तो वो पैसे और रुपए लेकर क्या करेगी। जी हाँ दोस्तों, इनके मौत के बाद एक इंटरव्यू में नरगिस ने कहा था, मौत मुबारक हो मीना। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों आप कह रही हो, तब उन्होंने रिवील किया कि मैंने जो है मीना को, महजबी को तड़पते हुए देखा है, उनके टॉर्चर, उनके जो लाइफ में दुख है उसे मैंने जीते हुए देखा है। मर तो वो बहुत पहले ही गई थी, बस जिंदा लाश बनकर रह गई थी हमारे बीच। इसलिए मैंने कहा कि मौत मुबारक हो मीना, ताकि तुम सारे दुखों से आज के बाद आजाद हो गई हो। ये नरगिस की स्टेटमेंट थी। तो चलिए दोस्तों, मीना कुमारी एक बहुत ही उम्दा अदाकार थी जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स भी काफी जीते थे। आज हम उनको पाकीजा के इस गीत को प्ले करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए इस प्रोग्राम को संपन्न करने जा रहे हैं, यानी कि आज के कलाकार को अलविदा कहेंगे इस गीत के साथ। और हमारा श्रद्धा सुमन अर्पित है मीना कुमारी को।
1: शिमारू फिल्म।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे निशी समाचार। अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वो कहते हैं ना कि जमाने को चलो बदलते हैं एक नए दौर की और चलते हैं। पुकार को सुनते हैं, चीख को नहीं ललकारते हैं। परंपरा एक

आवरण में छुपे हर भेद को उभारते हैं, उड़ान से लिंग का रिश्ता क्या, ऐसे प्रश्न खुद से पूछते हैं, मेरा सच और सच्चाई के अंतर को पहचानते हैं, निरंतर समाज की सृष्टि के लिए निरंतर कदम उठाते हैं, एक श्रेष्ठ नहीं एकजुट चलो जमाने को बदलते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का बिल्कुल धुआंधार गीतों के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, हिंदी फिल्मी गीतों के नगमों के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। दोस्तों, वैसे तो भारत में बहुत जगह गर्मी हो रही है और बहुत जगह जो है धुआंधार बारिश हो रही है। वैसे में कुछ बातें आप सभी से साझा कर दूं। अगर आपके शहर में बहुत ज्यादा गर्मी है, लू चल रही है, तो आपको चाहिए कि दिन के वक्त जब भी आप काम पर निकले तो कम से कम अपने सर को आप ढक कर निकले, अच्छी तरह से सर का प्रोटेक्शन लेके चले, क्योंकि लू अगर लग जाती है तो सर से ही सबसे ज्यादा जो है इफेक्ट करती है। ऐसे में आप ठंडा पदार्थ तो पिए, लेकिन ये याद रखे कि आप रास्ता में आने जाने वाले जो पाए जाने वाले जो पदार्थ मिलते हैं, जूस या फिर लस्सी वगैरह, जब भी पिए सोच समझ कर थोड़ा सा पिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनमें बैक्टीरिया हो जाती है गर्मी के कारण, और जो है बाद में इसे आपको टाइफाइड जैसी बीमारी या फिर दस्त होने लग जाता है। और जी हाँ, गर्मी से बचाव के लिए पानी खूब पिए आप। पानी अगर आप पिएंगे तो आपको और कोई पदार्थ

0: की जरूरत नहीं है। प्याज का सेवन आप कर सकते हैं, फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, खीरा टमाटर जैसे चीजों का आप सेवन करें, नॉन वेज को दिन के वक्त अवॉइड ही करें। ये तो हो गया गर्मी जहां पड़ रही है उसके बारे में। अगर आपके यहाँ धुआंधार बारिश हो रही है और अगर आप हिली एरियाज में रहते हैं तो प्लीज प्लीज प्लीज लैंडस्लाइड प्रोन जोन एरिया से बच के चले। जी हाँ, पानी भराव जगह जगह पर हो सकता है, अपने वाहन को धीमा गति से चलाए, रात के वक्त लो बीम पर चलाए और स्पीड कम रखे। जल भराव के कारण जगह जगह गड्ढे बन सकते हैं, अपने आप को भी बचा के रखे और आपके आमने सामने आने जाने वाले वाहन तथा रास्ते पर रहने वाले जीव जंतुओं का भी ख्याल जरूर रखिएगा। फ्लड अगर हो रहे हैं तो आप फ्लड प्रोन जोन एरिया से बच के जाइए। और जी हाँ, एक और खास बात, गर्मी और सर्दी या फिर बारिश होने वाले जगह जहां पर भी आप रहते हो, आप वेदर फोरकास्टिंग को जरूर सुनिएगा और उसी के अनुसार आप अपने आप को तैयार करके ही घर से बाहर निकलिएगा। अगर आपको बहुत आवश्यकता ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, वक्त हो चला है एक और सेगमेंट यानी कि धुएंधार हिंदी फिल्मी गीतों का, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफ बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम में। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट तो आ चुका है, लेकिन दो लफ्ज आप सभी के लिए कि वक्त गुजर जाएगा हम बिखर जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा हम बिखर जाएंगे, कौन जाने कि हम किधर जाएंगे। हम आपकी परछाई है याद रखना, हम आपकी परछाई है याद रखना, जहां तन्हाई मिलेगी वहां हम नजर जरूर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं लफ्जों के साथ अब मैं आप सभी के लिए पेशे खिदमत कर देती हूँ प्यार भरे नगमों को। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, इस धुएंदार गीत के साथ ही हमारे आज के हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। आप इस कार्यक्रम को सुन रहे थे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे अपना गीत कार्यक्रम के साथ।
1: नमस्कार, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज सुनने वाले सभी श्रोताओं को गैर अतः का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, आपके लिए आज फिर मैं लेकर आई हूँ अपनी मिट्टी की खुशबू, यानी कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें हम सुनाते हैं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग समुदायों के गीत। तो चलिए एक पल भी देर किए बिना शुरू करते हैं कार्यक्रम अपना गीत और सुनते हैं ये आदि गीत, जिसे गाया है हम सबके फेवरेट तालुत मिजे ने।

तलुत्मिजे सर, आपकी आवाज और गीत हमेशा यही फील कराते हैं कि आप हमारे सामने खड़े हैं और हम गाना के जरिए आपसे बात कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आप पता नहीं गीत। ये गीत है भाई बहन के रिश्ते का, भाई बहन के प्यार का। भाई अपनी बहन से दूसरों की चीजें न ललचाने की बात करते हुए उन्हें वो सब देना चाहते हैं जो उनके पास में है। इस गीत को गाया है अपातानी के मशहूर गायक हागे तादा ने।

श्रोता, इस गीत से एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जब हम अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ने लगता है, खासकर रुपए पैसे के मामलों में, तो कई बार हमारी जरूरत को फुलफिल करने के चक्कर में हम गलत कदम उठा लेते हैं और जब समझ आती है तब बहुत देर हो जाती है। इसलिए मेहनत से हम जितना भी कमाते हैं, जितना भी पाते हैं, उतने में खुश रहने में ही सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत अरुण FM 103.1 MHz पर अपने रेडियो साथी गैर के साथ।

दोस्तों, माता पिता हमारा पहला गुरु और हमारा वजूद होता है। चाहे हम कहीं भी रहे, अपने दिल से अपने माता पिता का प्यार और ख्याल कभी नहीं खोना चाहिए। इसी तरह अपने माता पिता के लिए अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करते ये वांचो गीत आप सुन रहे थे बोतिक लुकम की आवाज में। तो आइए अपना गीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं नोकपन हांगसिक की आवाज में, तुत्सा गीत।

103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जिसमें आप आनंद लेते हैं आपका अपना राज्य अरुणाचल प्रदेश के गीतों का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत, जहां एक खूबसूरत लड़की को मर्द अपने बहकने की वजह मानते हैं, वजह बताते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है गालो गीत हम सब के चहेते जेली काई की आवाज में।

0: श्रोताओं, जेली काई द्वारा गाए इसी गालो गीत के साथ अपना गीत कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता मित्रों को कार्यक्रम पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे सप्ताह में 3 बार यानी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। तो मिलते हैं अगले अंक के साथ, तब तक के लिए अपने रेडियो साथी गैर को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे अपना गीत कार्यक्रम के साथ, जिसे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से पेश किया जा रहा था। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि 8:30 का वक्त रहेगा दोस्तों, जी हाँ, वेस्टर्न मेलोडीज का। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: The office of the district magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent

0: दोस्तों अभी आप आनंद उठा रहे थे पाश्चात्य संगीत का कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज से एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है, अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां फ्रेंड्स, तो लीजिए आपसे बस कुछ ही देर में आनंद उठाइए भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। भले ही ये भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, लेकिन इन गीतों को हम हमेशा हमारे होठों पर गुनगुनाना बेहद पसंद करते हैं, और शायद इसी वजह से ये सदाबहार नगमों का कारवां है। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं गीत आप सभी को सुनाने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है। और इसमें से सबसे पहला जो गीत मैंने चुना है दोस्तों, वो वाकई में बहुत इंस्पिरेशनल भी है। कभी कभार जिंदगी में हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ जिम्मेदारियां, हताशा, लव फेलियर्स वगैरह कुछ भी अगर मुश्किलात आ जाती है तो हम कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं, और हार मान कर कभी कभार हम कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। दोस्तों, अब जो मैं गीत पेशे खिदमत करने जा रही हूं, ये एक ऐसा गीत है जो सचमुच में सुनने के बाद, कहा जाता है इसे सुनने के बाद बहुत लोग जो है इस गीत से इंस्पायर होकर, जो मायूस होकर बैठे थे और कहीं ना कहीं अपना जान तक लेना चाहते थे, स्पेशली लव फेलियर होने के कारण, इन्होंने इस गीत को सुनने के बाद जो है जीने की तमन्ना जो है अपने अंदर दोबारा इसे संजो के रखा और जो है फिर से जीना शुरू कर दिया। इसके भाव भी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ प्यार जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना के रखने की बात कह जा रही है, और बेहद खूबसूरती से बयां करता हुआ ये गीत जो है, आप सचमुच में अगर आपको भी कभी भी ऐसा जिंदगी में लगे कि अब तो बस सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मुझे नहीं जीना है, तो इस गीत को एक बार जरूर सुनिएगा। ये गीत आपको दोबारा जीने की जज्बा जरूर देगा दोस्तों। एंजॉय कीजिए और इसे एक सबक भी लीजिए।
1: शिमारू के नए

दोस्तों आप सब आनंद उठा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा है एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। हम दिल की बात कहते हैं, दिल की बात करते हैं और दिल से दिल की बात को दिल तक पहुंचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि दिल की अपनी ही जिद होती है। कभी ये हंसाता है, कभी रुलाता है और कभी ऐसी भावनाएं जगा भी देता है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है ना दोस्तों। इसी दिल की नाजुक भावनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश खिदमत करता हुआ आ रहा है अगला गीत बस आप सभी के लिए। तो आइए प्यार एहसास और दिल की बातों से सजे हुए इस मधुर नगमे का आनंद लेते हैं साथ साथ।

वाकई में दोस्तों, जिंदगी में थोड़ा है और थोड़े की ही जरूरत है। इस खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की भूले बिसरे गीतों का सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। जी हां दोस्तों, चलते चलते वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि हमारे तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आप सभी के लिए ढेर सारे खुशियां लेकर आए। अब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सेहतमंद रहे और अरुण एफएम को जरूर सुनते रहे। और याद रखे, बुराई तो छोटी सोच वाला इंसान ही करता है, बड़े सोच वाले तो माफ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ संचार निष्पादक पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता ताना आतुम तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपना को रुखसत होने की इजाजत दीजिए और आगे के कार्यक्रमों के लिए एफएम गोल्ड पर बने रहे। अपना भरपूर ख्याल रखिए।

0: रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहां पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है। तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है, लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है। तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स। डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
0: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: नमस्कार,
0: सवाल पूछे अपना।
3: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
2: रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है। तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं। तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
0: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है, ये बताएं।
1: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6

0: महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहां रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम वो 15,000 रुपए, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपए तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपए तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
0: के दो बार दिया जाता
1: है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
0: राकेश जी आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहां आप काम कर रहे हैं वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है?
0: कंपनी के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में, साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपए तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपए, अगर 20,000 रुपए तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपए, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपए तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपए का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को ये प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा, तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
0: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
3: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हाँ जी थैंक यू, और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
3: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती, क्या
1: पात्रता क्या होनी चाहिए?
4: रवि जी इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपके संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं, और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1,00,000 से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा, और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
1: जब एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सबके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
0: जी एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है, तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं

0: अगर उन्होंने मिनिमम दो भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूं आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ECR पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
1: हाँ,
0: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी EPFO को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया, बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है, तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
1: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है उसकी आवाज कम कर दें।
2: मैडम कर दिया मैंने।
1: जी जी,
2: कर दिया कर दिया।
1: सवाल
2: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ NIC मुजफ्फरपुर में, ठीक है
1: जी,
2: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के, ये मेरा जो है EPF नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो EPF कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
1: जी पुनीन्द्र जी,
0: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से EPF से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग उन आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
1: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो,
3: हाँ जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ ठाणे महाराष्ट्र से।
1: जी जी,
3: हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे EPFO में जो नई कंपनियां होती है, जैसे ज्वाइंट होते है, लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड, कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का जिस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी। प्रणय जी,
4: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है PF जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर PF जमा नहीं करता है, तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है, एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
5: नमस्कार, मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका PF जो कटता है या PF का जो इतना संभाग उनमें

0: लगता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे?
1: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फोन नंबर है उसके उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं। और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही, आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए। और जहाँ जहाँ से भी आपने काम किया है अगर आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफर करवा लें ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
2: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर जो अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
1: अभी
3: जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहाँ पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद उनका यूएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
2: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
4: जी नमस्ते।
2: नमस्ते
4: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
2: जी
1: नमस्ते
4: जी। पर मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
1: और नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहां पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
2: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
1: और तो कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
2: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
1: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहां रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पर रह जाएं। एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहाँ एक ऐसी स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहाँ इन दोनों को साथ में लेके चलने की बात हो रही है।
2: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
1: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहां 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
2: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।

0: नमस्कार मैडम, मैं धर्मेंद्र गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो प्लेयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको सेट कर सकता है।
1: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसे ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
2: सैलरी का पूछा
1: उन्होंने। सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए, तो 1 लाख से जो नीचे है उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
2: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
1: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवी के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
2: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
3: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेस लाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉय तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहां एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहां पे रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधा एम्प्लॉयर को अभी ज्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
2: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
3: विन-विन है जी।
2: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
4: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर।
2: जी।
4: सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर,
1: जी पूछे
2: जी मोहन जी,
4: जो सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए सर?
2: जनरलाइज सवाल पूछाना,
3: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।
2: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
1: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसे बहुत सारे ऐसे एमएसएमई हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा

0: सा इसको ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए, उनको केवल दो एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है। तो 2 साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट 2 नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है। तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
0: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर्स जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें। सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो 2 साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको 4 साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
2: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहां पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो वो बहुत जरूरी है, जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में, कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है। तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे, फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहां हमारे साथ, सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहां आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: चिरमिरी कुरासरा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे जी,
3: भारत रोजगार में कौन कौन से सेक्टर है?
1: कौन कौन से
2: इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है। तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ, ये सारी बेनिफिट जाती है
1: जी। अगर किसी के मन में प्रश्न है कि कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
0: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा, pmvbrv.labor.gov.in। इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80। इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
2: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
2: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी, एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में उपयोगी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी, आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं, आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र

0: सहित 15 लोगों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। 6 छात्र घायल हो गए और उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। अधिकतर मौतें दम घुटने के कारण हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इस सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6 खासदार शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह के टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले श्री स्टारमर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टारमर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken,
3: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. 15 people, most of them students, lost their lives in a tragic fire incident in the Aliganj area of Lucknow in Uttar Pradesh this afternoon.

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी

0: से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। स्विट्जरलैंड वार्ता में प्रगति के बाद अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध हटाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। सांसद एंडी बर्नहैम अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे। कतर में रास लाफान औद्योगिक शहर में हुए विस्फोट में भारतीयों सहित 13 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था है और एक भरोसेमंद शक्ति बन चुका है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कई पहलें शुरू की गई हैं। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्र प्रथम आज भारत का सर्वोच्च मार्गदर्शक सिद्धांत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने विकास और विनाश के चक्रों को देखा और सहा है। उन्होंने कहा कि भारत की चेतना में युगों का ज्ञान समाहित है। सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि लगभग 75,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और 6,000 से अधिक डाकघर स्थापित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलान बातार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेल सुख उखना से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे मंगोलिया के राष्ट्रपति के इस विचार से पूरी तरह सहमत हैं कि सबसे बड़ी मित्रता आध्यात्मिक मित्रता होती है। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने मंगोलिया में गंडन मठ के मुख्य मठाधीश खंबा नोमून खान गेशे लहरंपा डी जाव जांडोरोस से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और लोगों के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए मुख्य मठाधीश का आशीर्वाद अत्यंत सराहनीय है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ हुई शांति वार्ता ने संघर्ष समाप्त करने के लिए संभावित अंतिम समझौते की दिशा में एक ठोस आधार तैयार किया है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम के स्थायी समाधान के लिए श्री वेंस और ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के बीच विस्तृत प्रारंभिक वार्ता के बाद श्री वेंस ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से संघर्ष विराम की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मध्यस्थ कतर और पाकिस्तान ने भी वार्ता के पहले दौर को उत्साहजनक बताया है। इनकी ओर से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति व्यक्त की है। बयान के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी तरह की गलतफहमी या अप्रिय घटना से बचने के लिए एक विशेष संचार व्यवस्था स्थापित की जाएगी। दोनों पक्षों ने अमेरिका, ईरान और लेबनान के बीच एक समन्वय तंत्र स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। इसका उद्देश्य लेबनान में सैन्य गतिविधियों को समाप्त करना है। इस बीच अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान से जुड़े तेल प्रतिबंधों में अस्थायी राहत देते हुए 60 दिनों के लिए एक विशेष लाइसेंस जारी किया है। इसके अंतर्गत ईरानी कच्चे तेल के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की अनुमति दी गई है। यह छूट 21 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विश्व दर्पण के लिए मैं विशेष शुक्ला।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ब्रिक्स मंच के अंतर्गत सहयोग और भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी

0: निदेशक मिलियन लेमा तदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथोपिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय एवं राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के अंतर्गत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया और भारत ब्राजील द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक मेजर जनरल सेवानिवृत्त अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इजराइल दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी में आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। बैठक में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय इजराइल यात्रा के दौरान श्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत में आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति बनी थी। दोनों नेताओं ने भारत और इजराइल के बीच सहयोग को और गति देने पर भी बातचीत की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टारमर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टारमर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल थे। भारतीय मृतकों की सही संख्या अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कतर के अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क में है और मृतकों या घायलों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। हताहतों में भारत, कतर, तंजानिया, पाकिस्तान, गिनी, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या और नाइजीरिया सहित कई देशों के नागरिक शामिल हैं। फीफा विश्व कप फुटबॉल के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। स्विट्जरलैंड वार्ता में प्रगति के बाद अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध हटाए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। सांसद एंजी बर्नहम प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में आगे। कतर में रास लाफान औद्योगिक शहर में हुई विस्फोट में भारतीयों सहित 13 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।